लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत एक ही रास्ता। इस फिल्म से अभी आपने सुना, 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये रचना थी। साथियों, पानी की जरूरत, जल की जरूरत हम सभी को होती है, इंसानों को होती है, पशु पक्षियों जीव जंतुओं को, और इस धरती को तो सबसे ज्यादा होती है। धरती को यदि उचित रूप से बारिश नहीं मिलेगी, जल सिंचाई नहीं मिलेगी, तो भाई खेत कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे लहलहाएंगे? और अगर खेतों की प्यास बुझ जाए तो बिल्कुल अच्छे से मुस्कुराएंगे वो भी। इसी गीत में इसी तरह की सुंदर बात का समावेश।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी के स्वरों से सजाई ये गीत लव इन शिमला फिल्म से अभी आपने सुना। 1960 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। साथियों, इकबाल कुरैशी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। साथियों, इस धरती पर हमें लाने वाले हमारे माता पिता, हमारा पालन पोषण करने वाले हमारे माता पिता, सबसे न्यारे प्यारे आदरणीय माता पिता, उन्हें प्रणाम करता, उनके सुख की कामना करता हुआ आइए ये सुंदर गीत सुनते हैं।

आशा भोसले के स्वर से सजा ये गीत आपने सुना, मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। फिल्म का नाम आपकी परछाइयां, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। साथियों, सुहानी भोर का उदय हम सबको नव चेतना नव ऊर्जा दे रहा है। आइए स्वागत करें इस नव प्रभात का, नव भोर का, भोर सुहानी का।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत संत ज्ञानेश्वर फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। और अब आज के बोर जुबानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये गीत सज रहा है।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अनाड़ी फिल्म से अभी आपने सुना। 1959 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। इसी गीत के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 जुलाई वर्ष 2026। सवेरे के 5:53 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रही हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दिए देते हैं। छह बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 6:05 पर।

अर्पण कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 6:10 पर, 6:44 30 सेकंड पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान अयोध्या कांड, इसमें होगा आज इसका चौथा भाग प्रसारित किया जाएगा। संस्कृत में समाचार प्रसारित

किए जाएंगे प्रातः 6:55 पर 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं। अंग्रेजी समाचारों का वक्त प्रातः 7:05 पर।

गोल्ड सुप्रभात, सुनिएगा प्रातः 7:10 पर। आज सवेरे इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 7:30 पर। हिंदी समाचार सुनिएगा समाचार प्रभात के तहत प्रातः 8:00। 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार। उर्दू में बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा प्रातः 8:30 पर। म्यूजिकल दिल लगी सुनिएगा ये कार्यक्रम प्रातः 8:45 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 9:00। अंग्रेजी में समाचार प्रातः 9:05 पर। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा,
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी

0: युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। द गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women with Shambhala, Malti Verma, Lata Sodhi, Sandrika Sharma Jha and Renu Bhalla appointed as members. Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission with Kuldeep Singh and Muhammad Haroon as members. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support the empowerment, ensure the welfare of minority communities and safeguard their constitutional rights. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary measure, the state government has ordered the closure of all government and private schools, higher secondary institutions and Anganwadi centres in Mayurbhanj and Jagat Singhpur districts. Maritime operations have also been suspended and fishermen have been advised not to venture into the sea. US and Iran have paused attacks for a second straight day, raising hopes of renewed negotiations on an interim ceasefire after nearly 2 weeks of escalating military action. US Ambassador to the UN, Mike Waltz, said yesterday, President Trump is giving diplomacy space, noting that Oman, Iran and other negotiators have been engaged in talks at all levels in recent weeks. India's weightlifting queen Mirabai Chanu has won her first gold medal for the country at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. She dominated the women's 48kg weightlifting event with a record-breaking total lift of 190 kilograms. The 31-year-old weightlifter set new Commonwealth Games records by lifting 85 kilograms in the snatch and 105 kilograms in the clean and jerk. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Mirabai Chanu on her achievement. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare yesterday. And that is the end of this news bulletin.

सोमवार की सुहानी सुबह और एफएम गोल्ड का साथ। आइए अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को संगीत के रूप में ढालते हैं और लेते हैं आनंद भक्ति संगीत का अर्पण के जरिए। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा हमारा प्रेरणा का स्रोत हमारा विश्वास है, क्योंकि जिस चीज में हमें विश्वास होता है वही कार्य हम पूर्णता से कर सकते हैं।

वक्त हो चला है 6:31 आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

भावनाओं से स्वच्छ हुए मन में विराजमान होने के लिए ईश्वर उसी प्रकार खींचा चला आता है जैसे सघन छाया के हरे भरे पेड़ के नीचे विश्राम पाने को थका हुआ पथिक आकर्षित होता है। आत्मिक पवित्रता ही रिद्धि सिद्धियों का स्रोत है। उपासना आवश्यक है और उपयोगी भी, पर उसका लाभ केवल उन्हें मिलता है जो अपनी मनोभूमि को सद्भावना से और अपने शरीर को सत्कर्मों से पवित्र बनाते हैं।

परिस्थितियां मानव की राह में रोड़ा बनकर तब तक ही आती हैं जब तक उसने अपने आप को कर्म के प्रति निष्ठावान न बना लिया हो।

अयोध्या पुरी में श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावी बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, और आइए अब सुनते हैं संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नंदन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमितलाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढ़ीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानां आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुं आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानां अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गत शुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दंड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षा मंत्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गत शनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य संपूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षा मंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रास नगरे 27वें कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिम युद्ध विराम विषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वॉल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानु इत्येषा स्वर्ण पदकं विजितवती। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीतकर मीराबाई ने असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर लगातार पदक जीतना उनके असाधारण समर्पण और बेहतरीन इच्छा शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार स्वर्ण पदक और कुल मिलाकर 4th राष्ट्रमंडल पदक जीतने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। श्री शाह ने कहा कि शानदार उपलब्धि ने चानू का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। वो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Dekar, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
4: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named the chairperson of the Delhi Commission for Women with Shyambala Maltivarma, Lata Sodi, Sanrika Sharma Jha and Renu Bhalla appointed as members. Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission with Kuldeep Singh and Mohammad Haroon as members. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support their empowerment, ensure the welfare of

है 7:21 और ये हो गए पूरे 22 मिनट। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तो आइए सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है वहीं कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी आपकी सेहत को सुरक्षित रख सकती है। जैसे पानी को हमेशा उबालकर पिए, ताज़ा और गर्म भोजन को ही प्राथमिकता दें, खुले में बिकने वाले कटे फल या स्ट्रीट फूड से बचें, भीग जाने पर जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहनें ताकि सर्दी जुकाम के जोखिम से बच पाएं, और ये भी ध्यान रखें कि मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। हाथों की सफाई का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता और अच्छी आदतें इस सुहाने मौसम का आनंद भी बनाए रखेंगी और आपकी सेहत भी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। इजाजत दीजिए बबीता को और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे।

0: करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो से इस बेहद खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो आज सवेरे। स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ जया भारती और आज तारीख है 27 जुलाई। श्रोताओं, आज की सुबह की शुरुआत भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के इसी ऊर्जावान विचार के साथ। आज उनकी पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। मेहनत और सादगी का उनका यही मंत्र आज हमारे इस सफर की शुरुआत की प्रेरणा है। वैसे डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और बेहद दिलचस्प किस्से हैं जिन पर हम आज के कार्यक्रम में बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन हलचल से, साथ ही जानेंगे आपके महानगरों की धड़कन यानी मेट्रो न्यूज और मौसम का ताजा मिजाज और आज के इतिहास। तो मनोरंजन, जानकारी, इतिहास और डॉक्टर कलाम की यादों के इस लाजवाब सफर को मिस मत कीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों और इन दिलचस्प शख्सियतों के बारे में पूरी जानकारी के लिए कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज मेरी को होस्ट है सुभद्रा रामचंद्रन। हेलो सुभद्रा।
1: हेलो जया, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल यू लिसनर्स। वेक अप एंड स्टार्ट द न्यू वीक। वी आर हियर विद अनदर एडिशन ऑफ आज सवेरे, सो गेट रेडी एंड सेटल डाउन एज वी बिगिन द प्रोग्राम विद सम हेडलाइंस।
0: बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आज की सुर्खियों पे। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी।
1: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said, developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
2: Viksit Vibrant Village ki ye yatra sabko jodne aur sabse judne ka hi ek sashakt madhyam hai aur ab aap sabhi ki zimmedari और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा, उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री संग्रहालय में कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल

0: बॉक्स का उद्घाटन किया गया। यह आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का एक जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। होलो बॉक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करके भारत के प्रमुख नेताओं के दृष्टिकोण, विचारों और योगदान को इंटरैक्टिव 3D के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दर्शाया गया है, जिसमें आगंतुक इन प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद कर सकते हैं। इन पहलों के माध्यम से प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्देश्य भारत के सशस्त्र बलों को गौरवान्वित करना और देश के दूरदर्शी नेताओं की विरासत संरक्षित करना है।
1: In our bilingual live phone-in program, Public Speed tonight at 9:30 PM, we will bring an insightful discussion on vector-borne diseases, prevention, protection, and public awareness with Dr. Akshay Dhariwal, Public Health Specialist and former Director, National Center for Vector-Borne Diseases Control, and Dr. Piyush Ranjan, Professor in the Department of Medicine, AIIMS, New Delhi. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 and 011-2331-4444, 9:30 PM onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928-909-4044 or post your questions on X with the hashtag AskAir. The Ministry of Jal Shakti has said that Rajnandgaon district in Chhattisgarh has emerged as a national front runner in water conservation through scientific planning and community participation under the Catch the Rain campaign and Mission Jal Raksha. More than 60,000 water conservation and recharge structures have been created across 662 villages. Over 500 defunct bore wells have been converted into recharge shafts. More than 600 injection wells have been linked with over 1,700 mini percolation tanks, and over 2,500 water bodies have been geotagged.
0: आंध्र प्रदेश की हथकरघा और वस्त्र मंत्री एस सविता ने बुनकरों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमरावती में दिग्गज हथकरघा नेता प्रगदा कोटैया की जयंती पर कल उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रीमती सविता ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने इस अवसर को राज्य उत्सव घोषित किया है। श्रीमती सविता ने कहा कि NDA सरकार बुनकरों के लिए सम्मान जनक आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी उपाय लागू कर रही है।
1: Going over to some sports now. In men's cricket, India defeated House Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in the allotted 20 overs. Earlier, opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in the allotted 20 overs. Meanwhile, India have reclaimed the number one spot in the ICC men's T20I rankings after clean sweeping the three-match series against Zimbabwe at Harare. The reigning T20 World Champions regained the top spot from England.
0: और जब खेलों की बात कर रहे हैं तो क्यों ना ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की भी बात करें, जहां भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 190 किलोग्राम के रिकॉर्ड तोड़ भारोत्तोलन के साथ शानदार प्रदर्शन किया।
2: Commonwealth record for the Indian legend. What a weightlifting machine she is.
0: तो भाइयों सुनते हैं कि इस जीत के बाद मीराबाई चानू ने क्या कहा।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: 31 वर्षीय इस भारोत्तोलक ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए। इस जीत के साथ ही उन्होंने 2018 और 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार

0: तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो सबसे पहले शुरुआत चेन्नई से करें सुभद्रा।
1: Yes, let's start with news from Chennai, Jaya. The Greater Chennai Corporation has launched several measures to bring out of school children back to classrooms and prevent dropouts. The initiatives include appointing psychological counselors in schools and resettlement colonies, conducting socio-economic surveys to identify vulnerable children, organizing special camps for Aadhaar and birth certificates, and improving coordination with neighboring districts to ensure better access to schools. Greater Chennai Corporation Commissioner G.S. Samiran said the civic body will increase awareness about physical and mental health, step up action against drug abuse near schools, and work with the Madras School of Social Work to carry out socio-economic surveys in vulnerable areas. Moving over to Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister Dr. G. Parmeshwara has called for greater efforts to promote physiotherapy as part of preventive health care and strengthen sports medicine in the state. Speaking at the Bangalore Physiotherapist Network Colloquium in Bengaluru yesterday, he said the government will explore making physiotherapy services available at the district level to provide better support for athletes. Dr. Parmeshwara said physiotherapy should not be limited to treating injuries but should become a regular part of healthy living. He also stressed the need to ensure quality healthcare reaches every citizen. Jaya?
0: हाँ, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के खबरों की बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। दिल्ली से एक और अच्छी खबर है हमारे पास कि दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी को भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट और स्कीम एक्सपो 2026 में शहरी नागरिक सेवाओं तथा जन कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नागरिक केंद्रित सेवाओं, जन कल्याणकारी पहलों और शहरी प्रशासन में नवाचार के क्षेत्र में एमसीडी के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। बात करते हैं मुंबई की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल ठाणे में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें से तीन हाथ नाका यातायात जाम निवारण परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना से सिग्नल पर प्रतीक्षा समय घटकर 15 सेकंड होने की उम्मीद है। मंत्री ने ठाणे तटीय सड़क, पूर्वी फ्रीवे विस्तार, ठाणे बोरीवली दोहरी सुरंग और प्रस्तावित पॉड टैक्सी नेटवर्क जैसी चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुंबई विश्वविद्यालय अपने कलीना परिसर में इस माह की 29 तारीख को भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर पोस्टर और मॉडल निर्माण प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू अध्ययन केंद्र, भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अध्ययन बोर्ड और पुरातत्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। 53 कॉलेजों के लगभग 125 छात्र इसमें भाग लेंगे। पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 12 भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा।
1: And Jaya, now let's go to Hyderabad. Union Minister G. Kishan Reddy inaugurated the newly constructed Komuravelli railway station in Telangana yesterday, marking a significant boost for commuters and devotees visiting the Sri Mallikarjun Swami temple. Built at a cost of 6 crore rupees under the Manoharabad Kotapalli new railway Line project, the station has been equipped with modern amenities reflecting the cultural heritage of the temple. And we have another one from Hyderabad. The Telangana Agriculture Department is organizing a 3-day seed mela from today to July 29 at Raitu Vedikas in Mandal headquarters across all 33 districts. The fair aims to help farmers tackle the impact of El Nino by promoting low water crops and providing quality seeds through dedicated counters. Agricultural scientists will guide farmers on crop selection, climate resilient farming and sustainable practices. Certified seeds recommended by research institutions will also be available. The agriculture director has appealed to farmers to attend the seed mela at their nearest Raitu Vedika and purchase suitable high quality seeds for the upcoming season.
0: और अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज उत्तर बंगाल के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे सिलीगुड़ी में वर्धमान रोड पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे और श्रावणी मेले के दौरान जलपेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में मुख्यमंत्री सिक्किम के नामची जिले में हाल ही में हुए सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि सौंपेंगे। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और अब रुक करते हैं मौसम का और जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। तो मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। टेंपरेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 29 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस। A generally cloudy sky with light rain will be seen in Bengaluru. The minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with haze. Temperatures are expected to range from 25 to 33 degrees Celsius.
0: तो अब समय है आज के इतिहास के बारे में बात करने का कि उन कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने आज अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1694 की, जब आज ही के दिन किंग विलियम तृतीय और क्वीन मैरी द्वितीय द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के लिए आधिकारिक तौर पर रॉयल चार्टर प्रदान किया गया, जिसने आधुनिक सेंट्रल बैंकिंग की नींव रखी।
1: 1939 द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया व्हिच इज रीनेम्ड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ इन 1949 एंड इज टुडे इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स।
0: और आज ही के दिन 1940 में यानी कि दुनिया भर में लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर बक्स बनी पहली बार एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया था।
1: वेरी नाइस, वेरी क्यूट।
0: बक्स बनी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार बनने वाला वह पहला दुनिया का एनिमेटेड चरित्र था और यह केवल एक कार्टून चरित्र नहीं बल्कि एक वह वैश्विक पॉप कल्चर के इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रतीक है।
1: दे वर अ फैमिली यू नो ऑफ कॉल्ड लूनी ट्यून्स।
0: बिल्कुल, वार्नर ब्रदर द्वारा निर्मित यह शातिर और गाजर चबाने वाला खरगोश पिछले 85 से अधिक सालों से दुनिया को हंसा रहा है।
1: यस आई नो, आई स्टिल वॉच देम राइट। 1955, the Austrian State Treaty officially came into force, restoring Austria as a sovereign, independent and democratic republic.
0: और अगर हम इससे कुछ दिनों पहले जाएं, 27 जुलाई 1949 को उस दिन दुनिया के पहले जेट इंजन से चलने वाले कमर्शियल पैसेंजर प्लेन डी हैविलैंड कॉमेट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान भरी थी और इस जेट इंजन के आने से हवाई यात्रा का समय आधा हो गया।
1: And in 2012, the spectacular opening ceremony of the 30th Summer Olympic Games was held in London, directed by acclaimed filmmaker Danny Boyle. And Jaya, today is, you know what, National Sleepyhead Day. This game, this has actually happened in Europe, Finland, May. It is a traditional Finnish celebration in which the last person to wake up is playfully splashed with water. So Jaya, if you decide to sleep even after, you know, your alarm goes off, what will you do? And I'm going to wake you up then.
0: बिल्कुल. तो अगर अलार्म बजने के बाद भी अगर आप चादर तान कर सो रहे हैं या सोने का मन बना रहे हैं तो समझ जाइए कहीं ऐसा ना हो कि कोई आकर आप पर भी ठंडा ठंडा पानी डाल दे.
1: I don't know where you live, otherwise I would come and
0: तो इसलिए मैं सभी श्रोताओं से भी ये कहना चाहूंगी कि जल्दी से उठिए और मुस्कुराते हुए अपने जीवन की शुरुआत कीजिए.
1: Yes.

0: of course. So let's move on to our next section.
1: We're
0: starting with Mr. Kalam, I guess, 2015. APJ Abdul Kalam, as the 11th president and celebrated aerospace scientist, passed away in Shillong this day. This happened in the year 2015. And of course, he played a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons programs.
2: बिल्कुल, हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो अखबार बेचते बेचते एक दिन देश का सबसे बड़ा अखबार बन गया.
0: Yes.
2: रामेश्वर के उस लड़के के बाद जिसे दुनिया ने मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति कहा.
0: Yes, he was the president of India from 2002 to 2007.
2: बिल्कुल.
0: And also, you know, of course, his scientific achievements and popularity gained him the epithets Missile Man and People's President. And Jay, he also wrote several books, you know, autobiography, Wings of Fire, this in 1999, and a book titled Ignited Minds in 2002. And among his numerous awards were three of country's highest honors, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the Bharat Ratna.
2: जी, आपने इनके बारे में बात की है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम इनके कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे. तो बताना चाहूंगी कि रामेश्वरम का वो तटीय इलाका जहां लहरें किनारे से टकरा कर लौट जाती थी, वहीं एक छोटा सा बच्चा लहरों के पार उड़ने वाले परिंदों को देखता था और उसने वहीं से तय कर लिया था कि एक दिन उसे भी आसमान छूना है. गरीबी थी, मुश्किलें थी, लेकिन इरादे फौलाद से भी मजबूत थे. सुबह 4 बजे से उठकर गणित पढ़ना, फिर स्टेशन जाकर ट्रेन से गिरते हुए अखबारों के बंडल उठाना और घर घर तक पहुंचना. कलाम साहब कहते थे कि कठिनाइयां इंसान को सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी है. और फिर भारत ने देखा विज्ञान का वो चमत्कार, चाहे वो देश का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 हो या फिर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें. पोखरण में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो पूरी दुनिया देखती रह गई. डॉक्टर कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया. लेकिन जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सादगी. जब वो देश के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता और बच्चों के लिए हमेशा के लिए खुल गए. वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए. 27 जुलाई 2015 शिलांग का वो मंच जहां वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे, शब्द थे रहने योग्य पृथ्वी. और अचानक वो सितारा हमेशा के लिए आसमान में विलीन हो गया. डॉक्टर कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखी किताबें जिनका भी आपने जिक्र किया, उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं की रगों में जोश भरते हैं. वो अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं. और आज देश तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसकी मजबूत बुनियाद में कलाम साहब की ही विजन धड़कता है.
0: And friends, today is the birth anniversary of Bharti Mukherjee, a notable Indian-born author and professor known for her exploration of immigration and identity in her literary works. Born in Kolkata, 1940, she exhibited early literary talent and pursued higher education in English and ancient Indian culture before relocating to the United States for advanced studies. Mukherjee faced challenges as an immigrant, particularly in Canada, where she experienced discrimination. Themes that are prevalent in her writings. And she later moved to the US, embracing the concept of the melting pot, identifying simply as an American with Bengali roots. Her famous novels are Jasmine, Tiger's Daughter, Wife, and The Holders of the World.
2: आज की तारीख सिनेमा जगत के एक ऐसे चेहरे से भी जुड़ी है जिनके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है. आज हिंदी फिल्मों के कालजयी अभिनेता अमजद खान की भी पुण्यतिथि है. फिल्म शोले के गब्बर सिंह के रूप में उनका निभाया किरदार और उनके डायलॉग आज भी हमारी बोलचाल और वैश्विक पॉप कल्चर का एक अमर हिस्सा है.
3: कितने आदमी थे
4: सरदार? 2 आदमी.
3: दो आदमी, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए. खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों
2: सिल्वर स्क्रीन पर जब यह खौफनाक आवाज गूंजती थी तो सिनेमा घरों में सन्नाटा छा जाता था, है ना सुभद्रा?
0: ऑफ कोर्स.
2: लेकिन पर्दे पर डर का दूसरा नाम बन चुके गब्बर सिंह यानी हमारे अपने अमजद खान साहब

0: आज साहित्य की दुनिया के लिए भी एक बेहद संजीदा दिन है। आज राजस्थान की माटी से निकले हमारे समय के जाने माने संत कवि पंडित शिवदीन राम जोशी की भी पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2006 को वे इस नश्वर संसार को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए थे। जोशी जी के बारे में एक बेहद विस्मयकारी बात यह है कि उन्होंने मात्र 10 वर्ष की कोमल आयु से ही साहित्य सृजन और काव्य लेखन शुरू कर दिया, जो जीवन पर्यंत तक चलता रहा। समाज में व्याप्त कुरूतियों और पाखंड पर करारी चोट करने वाले जोशी जी ने ज्ञान और वैराग्य के सच्चे साधक थे। वे अक्सर अपनी रचनाओं में लिखते थे कि अनुराग में प्रेम है, त्याग में प्रेम है, ज्ञान ही प्रेम है, ध्यान ही प्रेम है, राम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है।
1: Country singer, songwriter Bobby Gentry, whose real name is Roberta Lee Streeter, took birth this day in Chickasaw County, Mississippi. She learned to play the piano after watching the church pianist and later taught herself how to play the banjo, guitar, bass and vibes. Bobby was one of the first lady artists who wrote and produced her own material. Her late 60 hit Ode to Billy Joe earned her 3 Grammys. Let's listen to a bit of it right now.

0: आज 27 जुलाई को देश अपनी उस जाबाज बेटी को भी याद कर रहा है जिसने भारत माता के पैरों में बंधी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हाथों में बंदूक उठा ली थी। आज महान महिला स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्त जी की जयंती है। जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे जहन में पुरुषों के नाम पहले आते हैं, लेकिन कल्पना दत्त ने यह साबित किया कि आजादी की लड़ाई में देश की बेटियां किसी से भी पीछे नहीं थी। उनका जन्म 27 जुलाई 1913 को हुआ। वे प्रख्यात क्रांतिकारी सूर्य सेन, जिन्हें दुनिया मास्टरदा के नाम से जानती थी, उनके क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी।
1: And friends, we remember Bob Hope on his death anniversary. British-born American entertainer, comic actor known for his rapid-fire delivery of jokes and one-liners and for his success in virtually all entertainment media. And we also remember Tony Martin on his death anniversary, an American pop singer, movie actor whose handsome looks and smooth baritone made him one of the most

0: सेलिब्रेटेड ऑलराउंड एंटरटेनर्स ऑफ हिज एरा।
1: आज शुरू की देवी पद्म भूषण डॉक्टर के एस चित्रा जी का भी जन्मदिन है। आज के दिन वो केरल में जन्मी थी और दुनिया उन्हें मेडली क्वीन के नाम से जानती है। तो सुनते हैं उनका ये बेहद जादुई आवाज का यह गीत।

0: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए जया और सुभद्रा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
8: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
7: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

0: कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
3: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक

0: अधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
1: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
3: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State government and Union Territory Administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of the upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent and leverage technology to the maximum extent. The task force will also consist of former IB director Tapan Dekar, former ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. The Prime Minister added that the government is also moving forward towards introducing a new law in the Parliament today with stringent legal provisions regarding examinations.
4: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानून

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकणी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की माया नाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। ऋषि कांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मुसवदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्त तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहान की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज़ सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
1: इस बिल में पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायतें शामिल की गई हैं। इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं, जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खसूसी अदालती निज़ाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेजी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद 2024 के फ्रेमवर्क में खातिरख्वाह बेहतरी लाना है। रियासती सरकारों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतज़ामिया को, सेशन अदालतों को खुसूसी टास्क फोर्स अदालतों के तौर पर नामजद करने के अख्तियार दिए जाएंगे, जो मजकूरा कानून के तहत जराइम के खिलाफ खास तौर पर कानूनी कार्रवाई अंजाम देंगी। बिल की शिकों के मुताबिक खुसूसी टास्क फोर्स की अदालतें रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात की सुनवाई करेंगी, जिनके लिए लाजमी होगा कि वो फर्द जुर्म दाखिल किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएं। न्यूज डेस्क से कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकणी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे, ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहानात का निज़ाम काबिले एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनिता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाती इम्तिहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।

0: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से विकसित दरक्षा गांव पर प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। वजीर आजम ने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क की तामीर में नौजवानों के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि जब नौजवान समाज की निचली सतह पर हकायक से वाबस्ता होते हैं तो सबकी शमूलियत वाली तरक्की की जानिब भारत के सफर को मुस्तहकम बनाते हैं।
0: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
1: वजीर आजम ने विकसित दरक्षा गांव प्रोग्राम के बारे में कहा कि यह कदम नौजवानों को तहरीक देने के लिए उठाया गया है ताकि वो मुल्क के सरहदी गांवों का दौरा करें, उन्हें समझें और इस सिलसिले में सरगर्म हो। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवानों ने जबरदस्त जोश व खरोश जाहिर किया और तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें 400 से ज्यादा नौजवानों को मुंतखब किया गया है।
0: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मेमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन 2 हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक उबूरी जंगबंदी के बारे में ताज़ा मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप सिफारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए।

0: हैं और जब से अमेरिका ने अपनी कार्रवाई बंद की है पिछली दो रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेट लिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेट लिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112341444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskAIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी के क्याम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है खलाई शोबे में निजी शराकतदारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफे पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है ट्रंप का अमरीकी फौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला मल्ला बोहिरे असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें वजारत खारजा का बयान गुजरात महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट
0: और आखिर में खास खबर एक बार फिर हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकानी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की मायानाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर।

आइए हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक नए दिन एक नई सुबह का स्वागत करें आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है म्यूजिकल दिल लगी का, तो चलते हैं आज के सुरीले सफर पर। और आज साथ हूं मैं आपके पबिता। नमस्कार।

हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ घटनाएं जोड़कर जाता है, कुछ उपलब्धियां जोड़कर जाता है। आज का दिन यानी 27 जुलाई भी इसका अपवाद नहीं है। आज का दिन भारत के लिए एक भावुक स्मृति का दिन भी है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रख्यात वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ। उनका जीवन देश के युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। और इसके अलावा आज के दिन 1939 में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की नींव क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में भी रखी गई। और आज के दिन 1994 में भारतीय संसद ने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता लगाने वाले परीक्षणों पर रोक लगाने का कानून भी पारित किया। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी, और आइए अब सुनते हैं दुश्मन फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को स्वीकृति दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संडिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही यह दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने

सुकून और आराम के बाद आता है मंडे, यानी कि सैटरडे संडे के बाद। तो कुल मिला के बात यह है कि घर में रहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है घर से बाहर निकलना। और मंडे हमें काफी इंस्पायर करता है कि भाई चलो उठो तो सही। 9:11 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। 27 जुलाई है ये, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

अब कोई कहे या ना कहे, लेकिन अपने आप को तो कहना बनता है ना कि आई एम द बेस्ट। चलो चलते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही ना दिमाग भी चलता है पैरों के साथ साथ। और जहाँ तक रही पर्सिव प्रेम की बात, तो प्रेम से परिचय तो आपका भी होगा ही। प्यार वाले गाने हम सबको अच्छे लगते हैं। आज भी प्यार के इंतज़ार में कई सारे लोग होंगे, और इस इंतज़ार को अगर साथ मिल जाए म्यूज़िक का तो भाई क्या बात है, क्योंकि म्यूज़िक का कोई एज तो होती नहीं, सिर्फ होती है तो एक वाइब होती है, कुछ ऐसा जो हमें कहता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा जो हमें किक देता है कि भाई चलो आज का दिन तो हमारा बड़ा शानदार होने वाला है। म्यूज़िकल दिल्ली में आप सबका स्वागत है, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए आप।

वो मुझे मालूम है कि ध्यान तो सारा का सारा मंडे पे है और मंडे को लेकर के ना नई नई चीजें आती रहती हैं। जैसे कि एक बात है बेयर मिनिमम मंडे, अगर हम इसकी बात करें तो मंडे को केवल हम उतना ही काम करने के लिए सोचते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है, तो ये बना संडे की घबराहट दूर हो। इसलिए बर्न आउट से खुद को बचाने के लिए सिर्फ ये एक सोच है, क्योंकि जब हम काम पे लग जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम किधर हैं और काम किधर है।

चलते रहिए क्योंकि साथ में हम आपके हैं और हमें पता है कि हमें बड़ी चिंता होती है कि आगे क्या होगा। भविष्य की चिंता में हम सब पड़े हुए हैं, हालांकि पड़ोसियों को भी होती होगी। मानसिक तनाव और कई बार ऐसा लगता है कि जितने भी पैसे हैं हमारे पास वो सारे के सारे बहुत कम है। ऐसे में इमोशनल वैल्यूज भी तो कुछ चीज होती है, तो दूसरों को खुशी बेच कर खुद कमाई में बड़े सारे लोग लगे हुए हैं। जैसे कि ये तो आप सोचेंगे, मैं थोड़ी सारी बात बताऊंगी। वैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:24 और ठीक 40 सेकंड हो चुके हैं। म्यूजिकल दिल्ली की है ये, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल।

मैं और तुम इतने आराम से अब मिल सके, ये अब इतना आसान नहीं रहा। दोस्त बनाने, साथ घूमने और बातें करने के लिए भी अब ऐसे लोग हैं जो पैसे देना चाहते हैं, और कई लोगों को पैसे मिल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हो रही हैं जो पहले ज़्यादा नॉर्मल लगती थी, और अब वो नॉर्मल चीज़ें स्पेशल हो गई हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमें अपने आस पास जो ऐसी चीज़ें थी जो बड़े आराम से हमें मिल जाती थी, उन्हें उसी तरह से बनाए रखना, रिटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम छोटी छोटी बात के लिए पैसे देने लगेंगे तब कैसे चलेगा। इसीलिए जब हम कई बार खामोशी के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ हमारे आसपास सुनाई देता है। कभी आपने सुना है?

ऐसा तो सिर्फ गानों में हो सकता है कि हम चुप हो और कोई हमारी बात समझ जाए, क्योंकि ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? ये सवाल अब भी हमारे यहाँ रिश्तों में बहुत कम पूछा जाता है, और अगर कभी किसी ने पूछ भी लिया तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत अजीबोगरीब बात है, जहाँ एक बोल नहीं पाता और दूसरा सुन नहीं पाता। ऐसे में ये जो गाने होते हैं ना, बहुत हेल्प करते हैं, और हमें लगता है कि इनका साथ बड़ा बेमिसाल है, जिससे कि हम बहुत सारी बातें बड़े आराम से किसी के साथ भी कर सकते हैं, शायद अपने आप से भी। तो फिर आप इस ये जो छोटी छोटी बातें जिसका जिक्र हम अक्सर म्यूजिकल दिल्लगी में करते हैं, कभी इनके बारे में सोचते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास हमारे साथ भी हो रही हैं, आखिर इनके साथ किया क्या जाए? उपाय भी हम सबके आसपास ही होगा, बस ढूंढने की ज़रूरत है।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर,
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

आइए म्यूजिकल दिल्ली में आप भी शामिल हो जाइए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। अगर हम पूछें कि क्या आप थोड़ा सा झुका झुका सा फील करते हैं, मन से नहीं तन से, तो फिर समझ जाइए कि मोबाइल पे स्क्रीन टाइम कम करने का टाइम आ चुका है। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त कंधे बहुत सारे लोगों के अब झुके रहते हैं हमेशा, और ये बच्चे बड़े सब में हो रहा है, तो फिर इसका एक टेक्निकल नाम भी दे दिया गया, नेक हम्प। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर जाके ख़त्म होगी इसका तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हाँ अलर्ट ज़रूर कर सकता है कोई ना कोई जो हमारे आसपास बड़े आराम से ध्यान से इन सबको देखता है। तो ये टाइम है अपने आप को रोकने का।

0: और ये दास्ता कहाँ जाके रुकेगी ये भी नहीं पता। अगर आपके होठों पे चोट का निशान है तो हो सकता है कि मोबाइल का हो, क्योंकि लेटे लेटे फोन जो गिर गया होगा।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार,

और आप याद करेंगे इस बात को भी कि मिशन कर्मयोगी क्या है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा कौशल को सुधारने की एक राष्ट्रीय पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य है नौकरशाही को नियम आधारित रूल बेस्ड प्रशिक्षण से हटा करके भूमिका आधारित यानी कि रोल बेस्ड और जन केंद्रित बनाना। इसके बारे में और जानिए और फिर देखिए आपको कैसा लगता है। और अगर हम बात करें ओवर थिंकिंग की, तो वो आप स्टॉप करना चाहते हैं और वो रुकती ही नहीं, तो कीजिए वही जो अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग खाली होगा तभी तो उसमें कुछ घुसेगा। और दिल का भी कुछ यही हाल है, दिल और दिमाग दोनों थोड़े थोड़े खाली होने चाहिए, पूरे नहीं।

हम तो आपको यही कहेंगे कि आपका मंडे आपके मन के अकॉर्डिंग हो, एकदम शानदार बीते, और आप कहें भाई वाह साथ हो तो फिर ऐसा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड जैसा। इसी के साथ मैं कहती हूँ बजने वाले हैं 10, समय है ये समाचारों का, और उसके बाद हम तो आपके साथ हैं ही, यूं ही बने रहेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूँ, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आजकल की जो फिल्में हैं वो पुरानी फिल्मों से बहुत अलग हैं। पहले किसी फिल्म में अक्सर तीन किरदार ज्यादा खास हुआ करते थे, ज्यादा मशहूर हुआ करते थे। एक लीड एक्टर, दूसरा एक्ट्रेस यानी कि मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री, और तीसरे हुआ करते थे विलेन यानी कि खलनायक। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था दोस्तों कि किसी किसी फिल्म में नायक से ज्यादा चर्चा खलनायक की हो जाती थी। जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में खूब नाम कमाया, ऐसे बहुत सारे कलाकार हिंदी सिनेमा में रहे हैं। तो आज एक ऐसे ही शानदार कलाकार की हम बातें करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। उनका नाम अमजद खान। जी

दोस्तों आज के जो गाने हैं वो आपको थोड़े से अलग सुनाई देने वाले हैं, क्योंकि आज मैं कोशिश करूंगी आपको वो गाने सुनाऊं जिनमें अमजद खान नजर आए। वैसे इस गाने में आपने आवाज सुनी कंचन और अमित कुमार की, और ये गाना फिल्माया गया था फिरोज खान, जीनत अमान और अमजद खान पर। इस गाने में जो बार बार आवाज आ रही थी ना ड्रम बजाने की, वो ड्रम के बिल्कुल नजदीक ड्रम को बजा रहे हैं अमजद खान, और बड़े ही डैशिंग पुलिस वाले बने थे इस फिल्म में कुर्बानी में। दोस्तों अमजद खान को अदाकारी जो है ना वो विरासत में मिली थी। उनके पिता जयंत भी अपने ज़माने के नामी अभिनेता रहे। उनका असली नाम जकारिया खान था और उनका पूरा असर अमजद खान पर रहा। अमजद की आवाज़, उनका अंदाज़ बहुत ही अलग था। 12 नवंबर 1940 को उनका जन्म हुआ था और बचपन में ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। अमजद की जो पढ़ाई लिखाई है वो मुंबई में हुई। स्कूल और फिर कॉलेज में अमजद नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे और अपने कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी भी रहे अमजद खान। जी हाँ।

किशोर कुमार की आवाज में ग्यारहना फिल्म का गाना आपने सुना बिल्कुल अभी, और इस फिल्म को अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा अमजद खान का बिशन वाला किरदार, और उनके ऊपर कई गाने भी फिल्माए गए थे इस फिल्म में। ये बहुत ही खास फिल्म रही है अमजद खान के करियर की, और शायद आपको पता हो कि इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, भले ही फैंस अमजद खान को सबसे ज्यादा शोले के गब्बर के तौर पर याद करते हो, उनकी पहचान नेगेटिव रोल्स के लिए हो, लेकिन अमजद खान ने कुछ ऐसे पॉजिटिव किरदार भी निभाए हैं जिन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला, जैसे कि ग्यारहना फिल्म में बिशन का किरदार हो, या फिर आपने देखी हो कभी शतरंज के खिलाड़ी जिसमें नवाब वाजिद अली शाह का दमदार जो कैरेक्टर था वो निभाया था अमजद खान ने। फिर इसके बिल्कुल उलट उन्होंने कुर्बानी और उत्सव में कॉमिक रोल किए। अमजद खान को साल 2022 में बॉलीवुड के बेस्ट 75 एक्टर्स की लिस्ट में जगह दी गई थी। 1976 में उन्हें गब्बर की भूमिका के लिए BFJ अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड

मिला था 1980 में फिल्म दादा के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उन्हें फिर से दिया गया। 1982 में याराना के लिए उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। 1986 में फिल्म माँ की कसम के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट कॉमिक एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था। एक गाना अब मैं आपको ऐसा सुनाने वाली हूँ जिसमें अमजद खान बड़े ही आराम से बैठे हैं और बहुत ही आराम से गाना सुन रहे हैं। जी हाँ, ये गाना आपने सुना होगा धर्म कांटा फिल्म से।

आशा भोसले की आवाज में धर्मकांटा फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों, आज ही के दिन अमजद खान ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों की कल समाअत करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 22वीं दौलत मुशरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीम बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 में तरमीम करना है। दोपहर 12 बजे पहले इल्तवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉ जितेंद्र सिंह ने मजकूरा बिल ऐवान में पेश किया। बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान नीट मामले पर तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर बहस का मुतालबा करते हुए अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अरकान नीट मामले पर बहस का मुतालबा कर रहे थे और ऐवान में पेश किया गया बिल इस्लाहात की जानिब एक शुरुआती कदम है। उन्होंने कहा कि यह बिल नहायत अहमियत का हामिल है और इस पर जाम बहस जरूरी है जो ऐवान की इज्तमाही राय और कौम के जज्बात की अक्कासी करे। जनाब बिरला ने अरकान से अपील की कि वो अपने ख्यालात और तजावीज पेश करें ताकि मुल्क के इम्तिहानात के निज़ाम से मुतालिक मसाइल के मुअस्सर हल के लिए मुनासिब इकदामात किए जा सके। उन्होंने तमाम अरकान से ताउन करने और इस अहम बिल पर बहस में सरगर्मी से हिस्सा लेने की भी दरख्वास्त की। ताहम अपोजिशन अरकान तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामा आरई जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने भारत की मुमताज वेटलिफ्टर्स मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपंडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को स्कॉटलैंड में 23वें दौलत मुशरका खेलों में तमगे जीतने पर मुबारकबाद दी।
1: 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक

0: कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की असलाहत के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलेकणी की क्यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की असलाहत पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात को काबिल एतमाद बनाया जा सके।
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। जेडीयू लीडर और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय झा ने आज कहा कि इम्तिहानात में असलाहत के सिलसिले में तश्कील दी गई आला इख्तियाराती टास्क फोर्स से इंसानी मुदाखलत कम होगी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीकेकार फराहम होगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि यह कमेटी मुस्तकबिल में बगैर किसी खामी के इम्तिहानात को यकीनी बनाने की खातिर एक पुख्ता तरीकेकार फराहम करेगी।
3: तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगा।
1: बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के एमपी तरुण चुग ने कहा कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल को खत्म करने की खातिर मुजव्वजा बिल से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुल्क के नौजवानों और तलबा के मुस्तकबिल को महफूज करने के पुख्ता अजम की अक्कासी होती है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन पार्टियों पर ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने और सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक बिल पर बहस से बचने का इल्जाम लगाते हुए उनकी शदीद नुक्ताचीनी की। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल उन अफराद के खिलाफ सख्त और मुकर्रर वक्त में सजा का तरीकेकार फराहम करेगा जो पेपर लीक में मुलव्वस पाए जाएंगे।
4: कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है, उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दरख्वास्तों पर समाज से इत्तेफाक किया है जिनमें इम्तिहानात के पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा के खिलाफ पुलिस फोर्स के ताकत के मुबैना ज्यादा इस्तेमाल की बात कही गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और वी मोहन्ना पर मुश्तमिल एक बेंच ने एक अलहदा अर्जदाश्त पर गौर करने से भी इत्तेफाक किया जो उन पुलिस अहलकारों के कुंबे के अफराद ने दाखिल की है जिन पर एहतजाज के दौरान हमला हुआ था। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह मुशाहदा किया कि पुरअमन और कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज के हक को आईनी तहफ्फुज़ हासिल है। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो अदालत के साथ ताउन करेंगे। इस दौरान मुबैना पेपर लीक और दोबारा नीट इम्तिहान के ऐलान के सिलसिले में 3 मई को नीट यूजी को मनसूख किए जाने के पेश नजर आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट सुधाकर सिंह की जानिब से दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर समाप्त करते हुए अदालत ने कहा कि वो नीट इम्तिहान ऑनलाइन कराने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई नंदन नीलेकणी की क्यादत में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तजवीज पर गौर करेगी। खत्म हफ्ता में अमरीका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर फौजी हमले रोके जाने के पेश नज़र आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आज 5% से ज्यादा की कमी आई। ब्रेंट खाम तेल का आलमी इशारिया 5.3% गिरकर 91 अमरीकी डॉलर और 68 सेंट फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल में 5.4% से ज्यादा की कमी आई और ये 84 अमरीकी डॉलर और 44 सेंट फी बैरल हो गया। ईरान की जानिब से इशारा दिए जाने के बाद कि जब तक अमरीका भी फौजी कार्रवाइयां रोके रखता है तब

वो मजीद हमले नहीं करेगा, जिससे इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि इस महाज आरआई का एक सिफारती हल निकल सकता है। शूटिंग में आज चीन में आईएसएसएफ आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता है। 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप हर किसी के लिए तहरीक का बाइस है, जिससे इसमें शामिल होने वाले मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। इस 7 रोजा टूर्नामेंट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, कीनिया और जमैका जैसे ममालिक के शिरकत करने का इम्कान है, जो मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों की कल समाअत करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award, Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecast heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
5: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
2: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
5: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
2: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
6: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
2: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
7: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन ज़ी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
2: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
8: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का हो गया, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
9: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
10: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
2: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
11: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए।

विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331048 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विजाड़ी भेद परदेसी वातू करे ये भी बाला ये पुण्य प्रियत कौन हतो विजानन कौन हती शेनी साठियावाड़ मा गिर नामनो जंगल ने अवेदो गोरवियाड़ो नामनो मालधारी चरण राज दरबारी चरण नहीं दीकरी हती पण केवी शेनी उघड़ता जोबान जोबननी भेळी मळेली लज्जा लंबा वेणी लज्जा घणी प्रोचे पातळिया आचे थाये निपाविया कोको कामणिया भले भगवाने कोक दी निपावी हसे एवी लांबी वेणी वाली दीकरी ने जल मीन जेवी प्रीत मां घर मां नोती एमा एक दिए विजानंद नाम नो चारण भेगू पोतानी हारे जंतर एटले के एक वाजिंत्र गामडानु जंतर मोटे तुम बड़े अने

0: साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर से शुरू हुआ तो उपसभापति श्री हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के वेल में घुस गए। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया और इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा बाधित होने से विद्यार्थियों और देश को गलत संदेश जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री केशव चंद्र ने आज खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री चंद्र ने खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और मंत्रालय की प्रमुख पहलों और चल रही गतिविधियों की समीक्षा भी की। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदियो जैसे अधिक प्रभावित इलाकों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रुकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. amid opposition protests over alleged police action against students during the protests on the NEET issue. Earlier, the House was adjourned several times amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties, including imprisonment of up to 10 years, fines up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months, and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received. The minister expressed concern over the behaviour of opposition parties and said that disrupting discussion on such an important bill sends a very wrong message. The Rajya Sabha was also adjourned several times and final till 5:15 p.m. amid protests over the same issue. Earlier, Minister of State for Home Nityananda Rai moved the prevention of insults to National Honour Amendment Bill 2026 for discussion. The bill seeks to give Bande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. The Supreme Court today asked the Uttar Pradesh government to include a forensic auditor in the Special Investigation Team SIT constituted by the state to investigate the allegations of embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. A bench of Chief Justice of India Surya Kant, Justice Joy Mallya Bagchi and Justice V. Mohanna also directed the SIT to submit a status report regarding its ongoing investigation. During the hearing, Solicitor General of India Tushar Mehta, appearing for the Uttar Pradesh government, told the Apex Court that SIT has been constituted, headed by Inspector General of Police IG for Lucknow Range S. Kiran. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador Dr. Oleksandr Polishchuk following the attack on a commercial vessel MV OMORFI in which an Indian national was killed. Conveying its serious concerns over the incident, the ministry condemns such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring the adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce. The United Kashmir People's National Party UKPNP today called on the Pakistani authorities to exercise restraint and refrain from using force against peaceful protesters participating in the long march organized by the Joint Awami Action Committee JAAC from Rawalkot to Muzaffarabad in Pakistan occupied Jammu and Kashmir POJK. The UKPNP said that over 40 people lost their lives since June the 5th amid ongoing unrest in the occupied territory. The march came after talks between JAAC and Pakistani authorities failed to produce a mutually acceptable outcome, prompting a renewed call for public mobilization. A deep depression of the northwest Bay of Bengal has triggered widespread torrential rainfall across Odisha, disrupting normal life and raising concerns over flash floods and inundation. The Met Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall in the state today. Several districts have recorded exceptionally heavy precipitation, with low-lying areas submerged and transport services affected. In Jammu and Kashmir, a fresh landslide today blocked the 250-kilometer strategic Jammu-Srinagar National Highway in the Udhampur district, while the main bridge in the Doda district was temporarily closed to vehicular movement after suspected cracks triggered a safety inspection. A fresh batch of 3,823 Amarnath pilgrims was allowed to cross the affected stretch after authorities restored one-way traffic on the highway. In Assam, the flood situation has improved as flood waters have receded in most of the affected areas. In ISSF Shooting World Cup, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze to complete the double podium finish for India. And that is the end of this news bulletin.

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आइए साथियों, कुछ बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनते हैं, अपने जमाने के ऐसे गीत जो हमारी जुबां पर रहे, ऐसे गीत जिन्होंने हमारे दिल में घर किया, और ऐसे गीत जो आज भी जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के टुकड़ों के साथ ये मेल भी।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के।
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और साथियों, अब एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं। ये फिल्म का नाम है जमीन आसमान। 80 के दशक में ये फिल्म आई और बहुत खूबसूरत गीत है लता जी की आवाज़ में। इस गीत के उस पार आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I'm Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with ICAR, Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi. Division of Floriculture and Landscaping invites applications for a walk-in interview for the selection of one young professional position. The engagement is for the project title Scientific Advisory and Technical Consultancy for the Development of a Sustainable Green Belt on the Central Verge of Delhi Metro, funded by Delhi Metro Rail Corporation. The position is purely temporary and will remain valid only for the duration of the project. The walk-in interview will be conducted on 28 July 2026 at 10 a.m. onwards at the Division of Floriculture and Landscaping, ICAR, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, 110012. Eligible candidates meeting the prescribed educational qualifications and experience requirements may appear for the interview along with the required documents. Detailed eligibility criteria, terms of engagement and other instructions are available on the official website, that is at www.iari.res.in. I repeat the website, kindly do refer to www.iari.res.in. The Sangeet Natak Academy, an autonomous organization under the Ministry of Culture, Government of India, has invited applications from eligible Indian nationals for filling up various administrative positions at the academy on a transfer or deputation basis for a period of 3 years. The vacancies are available for the post of a Deputy Secretary, Administration, Deputy Secretary, Finance and Accounts, Audit Officer and Senior Administrative Officer. The post carry pay scales ranging from pay level 7 to pay level 8 as per the 7th CPC. Eligible officers from central government, departments, state governments, union territories, autonomous organizations and other eligible institutions may apply through proper channel. Candidates are required to submit their applications in the prescribed format along with necessary documents. Applications should be forwarded to the Secretary, Sangeet Natak Academy, Ravinder Bhavan, 35 Firosha Road, New Delhi, 110001. The last date for receipt of applications is 31st August 2026. The detailed eligibility criteria, qualifications, experience requirements and application format is available on the official website of Sangeet Natak Academy. Kindly do refer to www.sangeetnatak.gov.in. The Central Water Commission, New Delhi, under the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, invites applications from eligible candidates for filling up 52 tentative posts of Assistant Director Grade 2, Subdivisional Engineer, Group P Gazetted Non-Ministerial Post. The posts are available in various offices of the Central Water Commission across India and will be filled on deputation basis, including short-term contract. The selected candidates will be placed in pay level 7 as per the 7th CPC. Interested eligible officers may submit applications in the prescribed format through proper channel within 45 days from the date of publication of the vacancy notice. Detailed vacancy information and application format is available on the official website. Kindly do refer to www.cwc.gov.in. I repeat, it is www.cwc.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। जनसंपर्क अधिकारी, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, रक्त आधान अधिकारी, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोथेरेपी विभाग तथा मेडिकल फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग। जरूरी योग्यता, आवेदन करने का तरीका, आवेदन का फॉर्मेट, ईमेल और पोस्ट से आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख इत्यादि और अन्य शर्तों के बारे में जानकारी के लिए देखिए एम्स भोपाल की वेबसाइट www.aimsbhopal.edu.in। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रशासनिक अधिकारी लेखा का एक पद रिक्त है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, विस्तृत शर्तों की जानकारी हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.labasna.gov.in। विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय नई दिल्ली में इन पदों को भरने की आवश्यकता है। सहायक रिक्तियों की संख्या 3, आशुलिपिक ग्रेड 1 रिक्तियों की संख्या 3 और उच्च श्रेणी लिपिक रिक्तियों की संख्या 2। अधिक जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट www.handlooms.nic.in। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अविवाहित भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रही है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देखिए वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स विशेषज्ञ सामरिक एनक्रिप्टरों के अभिकल्पन एवं प्रमाणीकरण के लिए 1 रिक्ति और सलाहकार सतर्कता के लिए 2 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित करती है। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.c.in। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए आवेदन। पदों की संख्या 9 है। भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर की जानी है और इसके लिए अधिक जानकारी हेतु आप देख सकते हैं वेबसाइट www.stpi.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को आवश्यकता है सहायक विमान क्षेत्राधिकारी और प्रशिक्षणाधीन सहायक उड़ान अनुदेशक की। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की वेबसाइट igrua.gov.in पर करियर पेज देख सकते हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आमंत्रित कर रहा है कनिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन ग्रेड 2 के 2 पदों और क्षेत्र कार्यकर्ता के 1 पद के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.ncdc.mohfw.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में परामर्शदाता परियोजना समीक्षा का 1 पद रिक्त है। वेतनमान, आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं NDMA की वेबसाइट ndma.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। परिक्रमा के इस अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया की प्रमुख खबरों से, साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद करेंगे जिनकी उपलब्धियां आज भी हमारे समाज और संस्कृति को समृद्ध बना रही है। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ ही मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
1: हेलो वैष्णवी। हेलो एंड अ गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड ऑन द 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट वैष्णवी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
0: लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया।
1: प्रोसीडिंग्स इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट डिसरप्टेड एमिड ऑपोजिशन रकस। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू सेज प्रिवेंटिंग डिस्कशन ऑन सच इंपॉर्टेंट इशू विल सेंड रॉन्ग मैसेज टू द कंट्री।
0: अमेरिका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट।
1: Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal.
0: ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक।
1: And 22nd Commonwealth Table Tennis Championship begins in New Delhi. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will observe CRPF Raising Day.

0: Yes, and celebrating a remarkable milestone in the history of India's security forces, we are observing today the 88th Raisin Day of the Central Reserve Police Force, the CRPF.
1: आज का दिन उन वीर पुरुषों और महिलाओं के साहस, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता को नमन करने का है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि सीआरपीएफ की शुरुआत 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में केवल एक बटालियन के साथ हुई थी?
0: That's right, and from those humble beginnings, it has grown into India's largest central armed police force with 246 battalions serving across the length and breadth of the country.
1: सीआरपीएफ को वास्तव में विशिष्ट बनाती है इसकी बहुआयामी भूमिका। आतंकवाद का मुकाबला हो, वामपंथी उग्रवाद से निपटना हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो, शांतिपूर्ण चुनाव कराना हो या प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में लोगों की मदद करनी हो, सीआरपीएफ हर चुनौती का डटकर सामना करती है।
0: एब्सोल्युटली वैष्णवी, एंड एवरी मिशन रिफ्लेक्ट्स द फोर्सेस गाइडिंग मोटो, सर्विस एंड लॉयल्टी। These are not just words, they are values that every CRPF personnel lives by every single day.
1: CRPF के कुछ विशेष इकाइयां भी हैं। क्या आपने रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के बारे में सुना है?
0: Of course, वैष्णवी, the RAF is specially trained to handle riots, crowd management and emergency situations with professionalism and sensitivity.
1: और अभिषेक, फिर है कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, एक विशेष कमांडो इकाई जिसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में कठिन अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
0: Yes, and it's truly inspiring, Vaishnavi, to see how these specialized units strengthen India's internal security while ensuring the safety of millions. But behind every uniform is a story of immense courage.
1: बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। पिछले कई दशकों में 2000 से अधिक सीआरपीएफ जवानों ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: एंड एवरी सैक्रिफाइस रिमाइंड्स अस, वैष्णवी, दैट व्हाइल वी गो अबाउट अ डेली लाइव्स, दीस ब्रेव हार्ट्स स्टैंड अलर्ट, ऑफन फार अवे फ्रॉम द फैमिलीज, प्रोटेक्टिंग अ पीस एंड सिक्योरिटी।
1: आज जब सीआरपीएफ

0: अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है तो ये केवल उसकी उपलब्धियों का उत्सव नहीं बल्कि उन मूल्यों का भी सम्मान है जिन पर ये बल गर्व करता है, यानी अनुशासन, साहस, पेशेवर उत्कृष्टता और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण।
1: From the snowy mountains to dense forests, from bustling cities to remote villages, the CRPF has earned the trust of the nation through its dedication and resilience.
0: वास्तव में CRPF देश के सबसे भरोसेमंद सुरक्षा बलों में से एक बन चुकी है, जो हर परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है, चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो।
1: So on this special occasion, Vaishnavi, we extend a heartfelt greetings to every serving and retired CRPF personnel and the families. Your service, sacrifice and commitment are deeply respected.
0: जी अभिषेक, और अंत में आइए याद रखें कि किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति केवल उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि उन वीर सपूतों के समर्पण में भी निहित होती है जो दिन रात उसकी एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करते हैं।
1: So here's wishing the Central Reserve Police Force a very proud and successful 88th Raising Day. And today we also pay a heartfelt tribute to one of India's most beloved sons, a visionary scientist and inspiring teacher, and the People's President Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, whose death anniversary we observe today.

0: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन बड़े सपनों, अटूट संकल्प और राष्ट्र सेवा की प्रेरक गाथा है। उनके निधन के वर्षों बाद भी उनके विचार, उनके कार्य और उनका व्यक्तित्व आज भी लाखों लोगों, विशेषकर देश के युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
1: And here I'd like to share something with our listeners, Vaishnavi, about the humble origins of Dr. APJ Abdul Kalam. He sold newspapers as a young boy to help support his family and fund his education. And later on, often called the Missile Man of India, Dr. Kalam played a defining role in strengthening India's defense and space capabilities. And beyond his scientific achievements, he will always be remembered as one of the greatest teachers our nation has ever known.
2: I designed a four-line poem-like thing called creativity. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great.
0: डॉक्टर कलाम की शिक्षा केवल कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं थी। चाहे वे किसी स्कूल में हो, विश्वविद्यालय में या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, वे हर युवा को बड़े सपने देखने, निरंतर सीखने और उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देते थे।
1: एंड डॉक्टर कलाम वाज बोर्न ऑन 15th October 1931 इन द टेंपल टाउन ऑफ रामेश्वरम इन तमिलनाडु। कमिंग फ्रॉम अ हंबल बैकग्राउंड, ही प्रूव्ड दैट डिटरमिनेशन एंड एजुकेशन कैन ओवरकम एवरी ऑब्स्टेकल।
0: उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की मजबूत नींव रखी।
1: And one of his landmark achievements came as a project director for India's first indigenous satellite launch vehicle or SLV-3.
0: जी अभिषेक, जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह का पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में सफल प्रक्षेपण भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपने ही देश में विकसित और प्रक्षेपित उपग्रह लॉन्च करने की क्षमता थी।
1: And his contributions didn't stop there, Vaishnavi. Dr. Kalam was instrumental in the development and operationalization of the Agni and Prithvi missile systems, earning him the well-deserved title of the Missile Man of India.
0: डॉक्टर कलाम का मानना था कि यदि वैज्ञानिक, शैक्षणिक संस्थान और उद्योग एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ मिलकर काम करें, तो भारत अपनी स्वदेशी तकनीक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।
1: डॉक्टर कलाम्स एक्सीलेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। ही रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस।
0: इसके अलावा देश ने

0: उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया।
1: And what's really commendable about his personality, Vaishnav, is that despite holding the highest constitutional office, he remained humble, approachable and deeply connected with the ordinary citizens.
0: अभिषेक, शायद यही कारण था कि उन्हें प्यार से जनता के राष्ट्रपति कहा जाता था। उन्होंने केवल अपनी उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपनी सादगी, विनम्रता, ईमानदारी और युवाओं पर अटूट विश्वास से भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीता।
1: And perhaps one of his most memorable messages, Vaishnavi, was dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action.
2: History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations.
0: अभिषेक, उनके ये प्रेरक शब्द आज भी हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं और लोगों को अपने सपनों पर विश्वास करने, कड़ी मेहनत करने तथा समाज और राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं।
1: Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday said, Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. He said the former president inspired children and the youth to dream big.
3: 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: And on this solemn day, we remember not only the scientists who strengthened India's defense and space programs, but also the teacher who ignited countless young minds.
0: उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि ज्ञान, विनम्रता, सेवा भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण में निहित होती है।
1: So as we pay a respectful tribute to Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, let us carry forward his vision of a developed, self-reliant and enlightened India.
0: अंत में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कलाम के आदर्श हमें निरंतर प्रेरित करते रहें और हर उस युवा को नई ऊर्जा और नई दिशा दें जो बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखता है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करने का। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता, हमारे टेलीफोन नंबर 0112331048, 0112371717, 0112371716 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है। सबसे पहले चलते हैं शिमला की ओर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इन दिनों ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला मनाया जा रहा है। चौगान मैदान में आयोजित हो रहा ये 8 दिवसीय उत्सव श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का भव्य शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ हो गया है। प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस ऐतिहासिक व पारंपरिक मेले का शुभ आरंभ किया। इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिर्जा परिवार की ओर से तैयार मिंजर मंदिर में अर्पित करने के बाद ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुनों के बीच शोभा यात्रा भगवान रघुनाथ मंदिर पहुँची। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक मिंजर मेला अपने आप में एकजुटता को दर्शाता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि ये उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांप्रदायिक सौहार्द और जीवंत लोक परंपराओं का प्रतीक है।
2: ये अच्छा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मिंजर मेले के माध्यम से इसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको छो करके रखा है।
1: मिंजर मेले में गाए जाने वाले प्रसिद्ध पारंपरिक ऋतुकालीन गीत कुंजड़ी मल्हार का विशेष महत्व है, जो प्रकृति, संगीत और स्थानीय लोक संस्कृति

0: मेले में सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों और हिमाचल प्रदेश के लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और लोक संस्कृति की अनुपम छटा के बीच आयोजित पहली सांस्कृतिक संध्या ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शानदार शुरुआत का संदेश दिया। आयोजन में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि चंबा का ऐतिहासिक मिंजर मेला आज भी अपनी सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के कारण लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। मेले के दौरान 8 भव्य सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा, जिनमें बॉलीवुड, पंजाबी, हिमाचली और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
1: Yes, and from the Ninjar Mela, we turn our attention to a story from Nashik. The Catch the Rain Water Conservation Initiative, been implemented in Maharashtra's Nashik district, was recently praised by Prime Minister Narendra Modi during his Mann Ki Baat program.
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: Let us now go over to our Mumbai correspondent to know more.
3: The Catch the Rain campaign has emerged as a successful model of water conservation in Maharashtra's Nashik district. Through strong public participation, interdepartmental coordination and the effective implementation of various government schemes, under the initiative 2199 water conservation works have been completed at a cost of ₹257.93 crore, creating an additional 12,243 TCM of water storage capacity and bringing 2,931 hectares of land under new irrigation. Thanking the central government for recognizing the initiative, Nashik District Collector Ayush Prasad, who led the campaign, appealed to farmers to adopt and implement the Jaltara project on their farms, describing it as an effective measure for groundwater recharge and water conservation. Maharashtra's Nashik has created a successful model for water conservation by converging several government initiatives, including the Gaal Mukta Dharan Gaal Yukta Shivar scheme, Jal Yukta Shivar Abhiyan 2.0, the Pradhan Mantri Krishi Sanchayi Yojana, stream deepening and widening works, and various other state government schemes. This integrated approach has significantly strengthened water conservation and improved water security across the district. For Parikrama, this is Shailaja Tiwale from Mumbai.
4: और अब मुंबई से रुख करते हैं विजयवाड़ा की ओर। विजयवाड़ा के पास ऐतिहासिक उंडावली गुफाओं में 2 दिन तक चले आंध्र प्रदेश तेलुगु महोत्सव का समापन हुआ। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव में तेलुगु भाषा, साहित्य और संस्कृति की समृद्धि का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 12,000 लोग शामिल हुए। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: The Andhra Pradesh Telugu Mahotsavam was held under the theme Language, Literature and Culture. It brought together noted scholars, writers, poets and cultural personalities from across the state. The program included literary discussions, poetry recitals, storytelling sessions, classical and folk dance performances, music concerts and exhibition of traditional arts and handicrafts. A special session titled Next Gen Telugu discussed the use of artificial intelligence, technology and digital platforms to promote Telugu language among the younger generation. Another program, Manaswaram, encouraged people to speak only in Telugu for a day and make the language a part of their daily lives. The Telugu Mahotsavam also adopted a 5-point resolution. It appealed to people to take pride in Telugu, use the language at home and in public life, introduce children to Telugu literature and culture, preserve traditional arts and support Telugu writers and artists. The scenic Undavalli caves on the banks of Krishna River provided a fitting venue for the celebrations. The Telugu Mahotsavam concluded with cultural performance and

0: మహామంగళహారతి, అల్లు మురళి ఫర్ పరిక్రమ, ఆకాశవాణి న్యూస్, విజయవాడ.
1: Actor Pankaj Tripathi will be honored with the Artist of Distinction Award at the Indian Film Festival of Melbourne in Australia. The honor will be presented to celebrate the actor's exceptional contribution to Indian cinema and his remarkable journey as one of the country's most respected performers. This will also be the first time the national award-winning actor will attend the festival and receive the honor in Melbourne. Tripathi is known for his roles in projects such as Gangs of Wasseypur, Newton and Stree, among others. The festival begins on the 13th of next month and will conclude on the 23rd of August. Let's listen into a dialogue from his movie Gunjan Saxena.
2: अरे बेटा मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं. बेटा जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती. यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है दो हफ्ते पसीना बहा ले. अंजन गेट अप, उठो.
1: एंड मूविंग ऑन, we now turn our attention to Panaji, and the centre has reaffirmed its support for Goa's cashew sector through financial assistance for cultivation, processing and value addition. Goa produced an estimated 17.87 thousand tons of cashew during 2025-26, highlighting the state's continued contribution to cashew production in the Konkan region. Our correspondent reports.
3: The Union Government is implementing several programs to improve cashew cultivation, increase productivity and encourage value addition under the Mission for Integrated Development of Horticulture. Financial assistance is available for setting up and upgrading primary cashew processing units for drying, grading and basic processing. Eligible units can receive support of 35% of project cost up to 12,25,000 rupees. In addition, cashew processing units can also benefit under the Agriculture Infrastructure Fund, which provides interest subsidy and credit guarantee support. These initiatives are expected to strengthen processing infrastructure, promote modern technology, and create more opportunities for entrepreneurs and improve the income of cashew growers across Goa. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
4: अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल.
1: इन शूटिंग इंडियाज ईशा सिंह ग्रैब द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट ऑफ द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इन हंगसो चाइना टुडे. शी अपस्टेज ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर एंड टुक द ब्रॉन्ज टू कंप्लीट अ डबल पोडियम फिनिश फॉर इंडिया.
4: और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ.
1: ऑन टू सम बिजनेस न्यूज, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रिबाउंडेड टुडे एंड एंडेड 1% हायर. द सेंसेक्स क्लाइम्ब 776 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,836, व्हाइल द निफ्टी रोज 229 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,996.
4: और अब याद करती हूँ उन महान विभूतियों को जिनका आज है जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि. इस क्रम में पहले हम याद करेंगे शिवदीन राम जोशी के बारे में. साहित्य की दुनिया में अब याद करते हैं एक ऐसे कवि को जिनकी रचनाओं में लोक जीवन की सहज अभिव्यक्ति दिखाई देती है. शिवदीन राम जोशी अपने समय के चर्चित कवि और साहित्यकार थे. उनकी कविताओं में सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदनाएं और भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है. उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं दी और साहित्यिक मंचों पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई. सरल भाषा और प्रभावशाली अभिव्यक्ति उनकी लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता रही.
1: Yes, and we're also remembering Kavimani Deshi Gavi Nayagam Pillai, who was born on this day in 1876. He was an eminent Tamil poet and scholar from Thirur Kanyakumari district. Renowned for his children's literature, translations and social satires, he was awarded the title Kavimanni in 1940 by the Tamil Sangam in Chennai. His masterpieces include Asiya Jyoti, Nanjil Natu, Marumakkal, Wazi Manmiyam and translations of Omar Khayyam. Born on this day to Shivananu Pillai and Adilakshmi, he lost his father at the age of 9. He pursued a Master of Arts degree and teacher training, ultimately returning to teach at the very school he attended, and before dedicating his life fully to Tamil literature and historical research epigraphy, he worked as a school teacher and a college lecturer. And his works are highly praised for the simple language, profound wisdom and nobility of thought.
4: और अब याद करते हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक साहसी महिला क्रांतिकारी.

0: Yes, you are listening to a composition, A Meeting by the River by Vishwamohan Bhatt.
1: और श्रोताओं, अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी गायिका से जिनके मधुरता ने भारतीय संगीत को कई भाषाओं में समृद्ध किया. हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक, के एस चित्रा के बारे में. उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती और अन्य भारतीय भाषाओं सहित 20 से अधिक भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए.

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और अभिषेक को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने SIT को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Lok Sabha was adjourned till 5 p.m. amid opposition protests over alleged police action against students during the protest on the NEET issue. Earlier, the House was adjourned several times amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties, including imprisonment of up to 10 years, fines up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months, and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received.
4: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt the debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress Party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
3: News just in, Lok Sabha has been adjourned for the day. The Rajya Sabha was also adjourned several times till 5:15 p.m. amid protests over the same issue. Earlier, Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 for discussion. The bill seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jan Gan Man. The Supreme Court today asked the Uttar Pradesh government to include a forensic auditor in the Special Investigation Team, SIT, constituted by the state to investigate the allegations of embezzlement of donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The court also directed the SIT to submit a status report regarding its ongoing investigation. During the hearing, Solicitor General of India Tushar Mehta, appearing for the UP government, told the Apex Court that an SIT has been constituted, headed by Inspector General of Police for the Lucknow Range, S. Kiran. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian Ambassador Dr. Alexandra Polishuk following the attack on commercial vessel MV Omorafi, in which an Indian national was killed. Conveying its serious concern over the incident, the ministry condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. A deep depression over the northwest bay of Bengal has triggered widespread torrential rainfall across Orissa, disrupting normal life and raising concerns over flash floods and inundation. The Met Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall in the state today. Several districts have recorded exceptionally heavy precipitation, with low-lying areas submerged and transport services affected. In Jammu and Kashmir, a fresh landslide today blocked the 250-kilometer strategic Jammu-Srinagar National Highway in the Udhampur district, while the main bridge in the Doda district was temporarily closed to vehicular movement after suspected cracks triggered a safety inspection. A fresh batch of 3,823 Amarnath pilgrims was allowed to cross the affected stretch after authorities restored one-way traffic on the highway. In Assam, the flood situation has improved as flood waters have receded in most of the affected areas. Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. On to sports. In ISSF Shooting World Cup, India's Isha Singh grabbed the gold in the women's 25-meter pistol event in China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze to complete a double podium finish for India. And two-time Olympian Sajan Prakash qualified for the men's 200-meter butterfly final after finishing as the sixth fastest swimmer overall in the heats at the Commonwealth Games in Glasgow today. The Indian finished second in heat two behind Scotland's Duncan Scott, earning a place in the eight-man final slated later tonight. And that is the end of this news bulletin.

5:11:21 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। आज हफ्ते का पहला दिन आपके साथ मैं सीमा वर्मा। मौसम भी देखिए हमारा कैसे साथ दे रहा है। मौसम बड़ा प्यारा बड़ा सुहाना हो गया है। पता नहीं आपके वहाँ बारिश थमी है या अभी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये गाना दोनों रूपों में मेल खा ही जाए।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर

0: एक या ITR 2 में भरनी है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
6: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
6: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

एक दूजे के लिए फिल्म से अभी हमने गीत आप तक पहुंचाया, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है और अब आपको एक ऐसा गीत सुनाते हैं साथियों जिसने अपने देश में तो धूम मचाई ही, 80s की बात कर रही हूँ, 1982 की बात कर रही हूँ, जब डिस्को डांसर फिल्म जो है वो पर्दे पर आई। अब इस फिल्म के वैसे तो सभी गीत तो बहुत पसंद किए गए, लेकिन एक ऐसा गीत जो भारत में तो बहुत चर्चित हुआ, डिस्को डांस का क्रेज स्टार्ट हुआ, मिथुन चक्रवर्ती जी हर दिल अजीज हो गए और रूस में, खास तौर पर रूस में वहाँ के रेडियो स्टेशंस पर यह गीत बजने लगा, वहाँ की शादियों में, गलियों में, किसी भी फंक्शन में ये गीत वहाँ बजता और लोग झूम झूम कर इस गीत पर नाचते। देख लीजिए ये असर होता है संगीत का। अब इसके बारे में बता दिया आपको तो याद कीजिए 80s का दौर जब डिस्को म्यूजिक आया और एक नई क्रांति लेकर आ गया, कुछ नया था जो हर किसी को भा गया। तो सुने फिर इस गीत को। पार्वती खान ने इस गीत को गाया और

भाई ये जो गाना है ये तो लास्ट में जो गाना गा रही है वो तो रो पड़ी, और रोना तो बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई मुस्कुराता रहे और दिल से मुस्कुराता रहे, सबके जीवन में खुशियाँ हों और ज़िंदगी बहुत प्यारे तरीके से आगे बढ़ती रहे। इसलिए चलिए एक गाना सुनते हैं जिसकी वजह से आपने मुस्कुराना तो ज़रूर है साहब।

साथियों, सावन का महीना हो, मॉनसून आ चुका हो, तो कई बार बातों ही बातों में बारिश का जिक्र बहुत होता है। और जब बारिश का जिक्र होता है तो हर कोई ये कहता है कि बारिश बड़ी अच्छी लगती है। और वो बारिश जो पहली बार धरती को छूती है वो अपने आप में बड़ी ख़ास होती है। याद रखिएगा, पहली बारिश बहुत ख़ास होती है, क्योंकि कहते हैं कि बारिश की बूंदें जो धरती पर चंद पड़ गईं, सारे इत्रों की खुशबुएं मंद पड़ गईं। तो जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, वो अपने आप में बड़ी ज़्यादा ख़ास होती है। बहरहाल, हम आपको याद दिला दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ 80s और 90s के बेहतरीन गीत, जो मैं बाहर का जो मौसम है उससे मेल खाते हुए गीत आप तक पहुंचा रही हूं। ये सोच करके आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बारिश का जब जिक्र होता है तो कोई कहता है मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, कोई कहता है कि घर पर हूँ तब अच्छी लगती है, बाहर नहीं। बहरहाल, चलिए, कैसा लगता है आपको, इस गीत में सुनते हैं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

उम्मीद करती हूँ गाते गुनगुनाते आपका जो सफ़र है वो आगे बढ़ रहा होगा। अमूमन देखा गया है कि जब बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम थोड़ा हो जाता है। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आप खुद को अकेला ना समझें, एफएम गोल्ड 100.1 आपके साथ है। और आज मंडे की खूबसूरत भीगी भीगी सी इस शाम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और ये एक बहुत भीगा भीगा सा गीत

सावन के महीने में सावन के झूले तो ज़रूर पड़ते हैं, और यहाँ पर हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं तो यहाँ पर झूले जो हैं वो थोड़ा सा हम मिस करते हैं, लेकिन अगर गाँव में देखें तो आज भी गाँव में सावन के झूले जो है वो ज़रूर डलते हैं और झूला भी झूला जाता है इस मौसम में। अब हमने ये बहुत प्यारा गीत सुना लम्हे फिल्म से। जब बारिश आती है तो अपने संग खुशियां लाती है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि कई बार बारिश अपने साथ एक बहुत ज़बरदस्त ताप लेकर आती है। अब आप कहेंगे कि पानी है तो ताप कहाँ से होगा। ये जब बारिश कई बार कुछ के लिए ताप बन जाती है और कुछ के लिए राहत बन जाती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार यादों का जो सफ़र होता है वो एक बार फिर से शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग याद आते हैं ऐसी बारिश में, जिनके साथ हाथ में हाथ डालकर कभी भीगे होंगे हम बारिश में। बहुत कुछ होता है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, कितनी सारी फीलिंग्स होती होंगी, सोचिए ज़रा।

इस गीत में एक अंतरे में लाइन आती है आखिरी अंतरे में कि कभी टूट कर चीज कोई जुड़ी है, बिल्कुल जुड़ती है साहब, बिल्कुल जुड़ती है, बस सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी होती है। ये सकारात्मक सोच हम कैसे रखते हैं भाई? आप अगर ये सोचेंगे कि अंधेरे में वो जो जुगनू दिखाई दे रहा है वही तो मंजिल है और उसका पीछा करेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको वो जो टूटी हुई चीज़ है वो ना जुड़े? और एक बात और बताऊं आपको मैं कि ये जो टूटी हुई चीज़ होती है जिसे हम दिल कहते हैं, इसे जोड़ते हैं हमारे दोस्त, कुछ पुराने और कुछ जो यूं ही राहों में चलते हुए नए दोस्त बन जाते हैं। कहते हैं कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं दोस्त जब साथ में खड़े हो जाते हैं। तो साहब दोस्ती है, और दोस्ती इन मौसमों की मोहताज नहीं होती, इनका अपना अलग एक मौसम होता है जो हमेशा के लिए होता है। तो ये गीत दोस्ती के लिए, आप सबके दोस्तों के लिए, और गोल्ड और आपकी दोस्ती के लिए।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम न भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

बारिश को एंजॉय करते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, बिल्कुल ये सफ़र जो है वो चल रहा है। और एक बार आपको याद दिला दूं कि इस भीगे भीगे मौसम में आपके साथ मैं सीमा वर्मा, FM गोल्ड 100.1 पर 5:49 एंड

गाते गुनगुनाते जो सफ़र हमने शुरू किया था 5:10 पर, वो अब बिल्कुल अपने अंजाम पर पहुंच गया है जी। डेस्टिनेशन हमें नज़र आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अब आपसे विदा लेनी है, अब जाना है, क्योंकि लौट कर फिर आपसे मिलने सीमा वर्मा ने ज़रूर आना है। विमलेश आ चुकी हैं स्टूडियो में, अपने कार्यक्रम की तैयारी कर रही हैं और मुझे इशारा कर रही हैं कि अब तुम सीट से उठोगी तो मैं सीट में बैठूंगी। तो कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। इस मौसम ने कह सकते हैं कि हमारे मूड को बहुत अच्छा कर दिया, और एफएम गोल्ड सदा ये चाहता है साथियों कि आप शाद रहें, आबाद रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भीगा भीगा मौसम होता है, गर्मी से हमें राहत मिलती है, तो ऐसे में बहुत कुछ दिल में होता है जो बाहर निकलना चाहता है। कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी अपने से कहना चाहते हैं, लेकिन वो सही समय नहीं होता है, है ना। और कई बार जब ऐसा मौसम होता है और खुशगवार हर तरफ सब कुछ नज़र आ रहा होता है, मुस्कुराते चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर दिल कहता है कि अब वो बात जो बहुत समय से दिल में दबी हुई थी, अब उसे बाहर निकालना ज़रूरी है, और वो फिर बात कहनी आसान भी हो ही जाती है। तो चलिए फिर अब वादा निभाइए, होंठों पर जो बात है उसे सुनिए, और सीमा वर्मा को इजाज़त

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर

0: व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both the Houses of Parliament were adjourned for the day following uproar by opposition parties on the alleged police action during students' protest over knee tissue. The Lok Sabha was adjourned several times today amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties including imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received. The minister expressed concern over the behaviour of opposition parties and said that disrupting discussion on such an important bill sends a very

0: ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
1: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
1: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: मेहनत का महत्व समझ लिया था। आर्थिक कठिनाइयों ने कभी उनके सपनों की ऊंचाई कम नहीं की। वे अक्सर कहते थे कि जीवन में परिस्थितियां कभी भी आपके भविष्य का निर्णय नहीं करती, बल्कि आपका संकल्प करता है। विज्ञान के प्रति उनका झुकाव लगातार बढ़ता गया और इसी जुनून में उन्हें चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचा दिया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के दौरान एक घटना अक्सर याद की जाती है। एक परियोजना को समय पर पूरा न कर पाने पर उनके प्रोफेसर ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ तो उनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी। उस चुनौती ने युवा कलाम को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और तय समय से पहले परियोजना पूरी कर दी। यही अनुशासन और समर्पण आगे चलकर उनके पूरे जीवन की पहचान बना। युवा अब्दुल कलाम भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे। चयन परीक्षा देने के बावजूद जब उनका चयन नहीं हुआ तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने लिखा कि कभी कभी ईश्वर हमारी योजनाओं को इसलिए बदल देता है ताकि हम अपने वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच सके। यही असफलता उन्हें वैज्ञानिक बनने की दिशा में ले गई। आइए सुनते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ये शब्द।
3: When I was a 23 fellow, that I will become a pilot, okay? I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was a 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had, I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. I told the chief of the air staff, I want to learn fly. He said, I'm going to give training. He trained me for 6 months, then I flew SU-30. Message is, dream transforms into thoughts, thoughts result into action.
4: कहते हैं कि सपनों की असली परीक्षा तब होती है जब रास्ता हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन से साबित किया कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि नई शुरुआत का अवसर होती है, और यही नई शुरुआत उन्हें उस संस्थान तक ले गई जिसने भारत के अंतरिक्ष इतिहास को बदल दिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन।
5: वर्ष 1960 का दशक, दुनिया अंतरिक्ष की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर थी। इसी दौर में वर्ष 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़े। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर काम किया। उस समय संसाधनों की कमी इतनी थी कि रॉकेट के पुर्जे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी में ढोए जाते थे। डॉक्टर कलाम को भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV।
6: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
7: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
6: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
7: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
6: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर डॉट GOV डॉट IN।
10: पर्सनल लोन

0: फोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
5: रूरल एरियाज की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य था कि गांवों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, माई जर्नी और टर्निंग पॉइंट्स जैसी पुस्तकें आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती हैं।
6: एक विरासत जो आज भी जीवित है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम ने स्वयं को पूरी तरह शिक्षण और युवा संवाद के लिए समर्पित कर दिया। 27 जुलाई 2015 को वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान ही उन्हें अचानक अस्वस्थता महसूस हुई और वहीं पर उनका निधन हो गया। ये संयोग ही था जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी युवाओं को सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने अपनी अंतिम सांस भी विद्यार्थियों के बीच ली। उनकी जन्मतिथि 15 अक्टूबर पूरे विश्व में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। डॉक्टर कलाम का सपना था एक विकसित, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक सोच वाला भारत। आज जब भारत अंतरिक्ष अभियानों, रक्षा तकनीक, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तब उनकी दूरदर्शिता और भी प्रासंगिक दिखाई देती है। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि महानता जन्म से नहीं मिलती, बल्कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा से अर्जित की जाती है। शायद इसीलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का एक स्थायी विचार है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने। तकनीकी सहयोग दिया अरुणदीप सिंह ने। नमस्कार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। प्रतिपक्षीयाणां भृशं कोलाहलेन संसद सदनम् अद्य स्थगितम्। अस्मिन् विषये चर्चायाः स्थगनं राष्ट्राय असमीचीनं सन्देशं प्रसारयिष्यतीति केन्द्रीय मन्त्री किरण रिजिजुः उदघोषयत्। एमवी ओमर्फी इति वाणिज्य पोते जाते आक्रमण प्रकरणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य निधनात् पश्चात् भारत सर्वकारेण युक्रेन देशस्य राजदूतः आहूतः। ऋतुविभागेन ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिम वंग राज्येषु अतिवृष्टिपरा पूर्व सूचना प्रख्यापिता। आईएसएफ लक्ष्यभेद विश्व चषक स्पर्धायां भारतस्य ईशा सिंह

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gaurandhavan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताज़ा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप

0: 4,000. Most Asian stock market indices register gains, and global crude oil prices tumble around 7%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त, सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट।
0: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ। इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे। लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की।
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving the Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end their 5-day losing streak.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल में 5.6% से ज्यादा, इंडिगो में 4.9% से अधिक और इन्फोसिस में लगभग 3.7% की तेजी आई। इसके विपरीत HDFC बैंक में 0.4% की गिरावट आई और एक्सिस बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।
0: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks' quality tilt advanced over 2.3%, IT rose 2.3%, and realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined, and 200 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 1 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि 5 दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई हैं। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
2: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निखिल जी रहा है आज बाजार में, जो अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है उस पर विराम अमेरिका ने लगाने की बात की है, और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है। और यही उम्मीद जो है बाजार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके अलावा देखिए, यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज़ को बाजार देख रहा है। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो बाजार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बावजूद,

0: लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाजार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज और वो इसीलिए रिएक्ट इस तरह से किया है.
1: We'd like to share with your listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deep Shekhar, you know, we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth story. So good results, as you said. And I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
0: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was expected in terms of performance.
1: Right. So the larger picture remains positive, green, and
0: that
1: and
0: is
1: very,
0: what
1: very optimistic.
0: That is what.
1: All right.
0: I
1: and particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
0: Yeah.
1: We have our first caller from Faridabad, Rajiv. Rajiv, welcome. Please ask your question.
2: मैडम, मैं राजीव शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से.
0: नमस्कार राजीव जी.
2: एक मेरे को आप लोगों से शिकायत है. आप लोग किसी भी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हम कंपनी स्पेसिफिक चीजें नहीं लेते हैं, लेकिन आप ही लोग स्पेसिफिक कंपनीज के रिजल्ट क्लियर करते हैं, ऐसा क्यों?
0: राजीव जी, देखिए, हम किसी स्पेसिफिक कंपनी पर एडवाइस नहीं दे सकते. रिजल्ट्स जो है वो एक अनाउंसमेंट होता है पब्लिक के लिए, और खास तौर पे जब लिस्टेड कंपनी होती है तो वो जनरल पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है.
3: राजीव जी, इसमें मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि हम आप तक सूचना पहुंचाते हैं, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है. बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या
0: जी,
3: करना
0: बिल्कुल
3: है. दीपशिखा जी, अभी जो मानसून की बात चल रही थी, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी कि मानसून का परफॉर्मेंस इस बार इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी रिजल्ट अगर हम देखें और मानसून को देखें तो आपको क्या लगता है कि मार्केट आने वाले कुछ समय में कैसा चल सकता है?
0: देखिए, अगर आप मॉनसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफ़ी हद तक पिकअप हो कर गई है. मॉनसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया है. अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया. तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ विल बिल्ड अपॉन इट.
3: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. विक्टर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: गुड इवनिंग सर.
0: गुड इवनिंग विक्टर.
4: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस मैडम. सो व्हाट विल बी द अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड ऑन द गोल्ड प्राइसेस? Because we have seen lot of volatility in the gold prices.
0: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. If and also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10-15% of your portfolio.
1: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
0: Exactly.
1: And one of the diversifications is gold.
0: Gold.
1: You know, nor do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
0: exactly.
1: fluctuations.
0: You know, if there is a geopolitical, crisis that we saw, or, you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
3: Yeah. Deepshika, abhi mid cap aur small cap ki hum baat kare to pichle kuch dino mein dekha gaya ki lagatar usme bhi giravat dekhi ja rahi thi, lekin aaj jaise khareedari bade paimane par hui to mid cap aur small cap mein bhi hame uchhal dekhne ko acha khasa mila hai. To ye rahat ka ek keh sakte hain ki asar hai, ya matlab rahat ki baat hai kya, abhi bhi isme volatility hame dekhne ko milegi, utar chadhav dekhne ko mil sakte hain?
0: Nikhil ji, dekhiye jis samay tak West Asia mein crisis ये जो है, इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट, तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा. और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है. तो अगर स्टेबिलिटी वहां आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा. लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है.
1: राइट. सो दीपशिका, यू नो, व्हेन वी टॉक ऑफ वोलेटिलिटी एंड यू आर सेइंग दैट इट्स बाउंड टू बी देयर, बट इज देयर समथिंग कॉल्ड रेंज बाउंड वोलेटिलिटी?
0: सो यू नो, इफ यू लुक एट, इफ टुमारो यू नो द पॉज इज लिफ्टेड, देयर इज अगेन अ क्राइसिस, देयर वुड डेफिनेटली इट वोंट बी रेंज बाउंड. So what I'm saying is, if you have a durable peace in West Asia, if it is durable enough, and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps will show a good movement. But this volatility, I can't say will be like range bound, especially because there is uncertainty in West Asia, on West Asia count.
1: So uncertainty filters down everywhere. And I think somewhere
0: exactly.
1: trying to fix it, find where is the method in that. Uncertainty is uncertainty.
0: Uncertainty, yes.
1: Right. Yeah. We have a next caller from Gurugram, Tarun. Tarun, welcome. Please ask your question.
5: Hi, good evening. My question is, with respect to the diversification in the mutual fund portfolio, which of these two options is a better option? Investing in directly into a gold mutual fund, or investing in the gold through a diversified or a liquid mutual fund?
0: I think it is best to keep a very best to maintain a balance.
1: Right. In fact, Tarun, and this is what a lot of experts also believe, that balance is the key. So if you're saying which is the best, both of them have their pros and cons, and our mutual fund experts invariably will share those with you, have been over the past few programs. But if a particular kind of a fund suits you, I think based on your risk appetite and based on your balance that you want to create, but I think balance has been a key which is advocated by most people.
0: Absolutely. I mean, if you have a diversified portfolio, you need to sort of have a diversified portfolio, keep a very balanced approach towards it.
1: Right.
3: दीपशिका, भी मार्केट की अगर हम बात करें तो देखा गया है कि लगातार कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और जो ऐसे सेक्टर्स थे जो कहीं रुक रहे थे, उन्हें भी एक ग्रोथ मिल रही है. तो अभी हमारी जितने इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज की जब बात करते हैं, एक ग्रोथ रेट जिसका हम बढ़ाते रहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे सभी को एक पॉजिटिव वे मिले आगे बढ़ने के लिए. आपको लगता है कि जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा अगर वो सस्टेन करते हैं चीज़ों को, तो उनको बड़ा मुनाफा मिलता है?
0: देखिए, छोटी कंपनी में अगर निवेशक निवेश करता है, एक वो रिस्क उसमें ज़्यादा होता है, एक रिस्क एपेटाइट रहता है. तो जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बेस्ट रहता है. आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न उसी हिसाब से ज़्यादा मिले. बट छोटे निवेशक हैं, बेहतर उनके लिए ये होता है कि वो रिस्क ज़्यादा ना लें.
3: जी.
0: तो उनका जो बेट है वो ऐसी कंपनीज पे रखें जिनका स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, देखें उसको, उसके परफॉर्मेंस देखें और तब घुसें उनमें.
3: और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. शंकर, आपका प्रश्न पूछिए.
6: नमस्ते मार्केट पंथर टीम.
0: नमस्ते शंकर जी.
6: मैडम, माय क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन. government declares inflation or whatever, RBI tries to control the inflation, but our real life inflation looks to me very high, and banks deposits for our senior citizens are never able to cover up the losses.

0: or it never actually gives beyond the, it gives always less than inflation. So how, I mean, what is the solution for us to senior citizens? Equity is one thing, but we are not in a position to take much risk. So where should we invest so that we are at least not at loss in FD, bank FDs? Thank you.
1: Shankarji, this is a question which actually is a big dilemma for policymakers also. You know, when interest rates rise, they benefit the investors who have deposits in banks or who are earning interest on their income. But it is also, it pinches those who have taken loans, who are also, who can be middle class savers, who have taken home loans or some other loans. But yes, from investment point of view, definitely inflation is always seen as a tax. It affects not just savers, but everybody else, even those who are going to purchase or households. Better would be to have a diversified portfolio. So you can also look at other investments, you know, just not bank FDs, but go beyond. And which is why we keep advising people to have a diversified portfolio so that both your risks and returns are well balanced and met with.
2: दिल्ली से अगले श्रोता है नितिन हमारे साथ में. नितिन जी, आपका सवाल पूछिए.
3: जी नमस्कार जी.
1: नमस्कार नितिन जी.
3: नमस्कार, मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गोल्ड और सिल्वर का रेट बताते हैं, तो जो 24 कैरेट प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगे तो उससे रेट से ज्यादा मिलते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं मिलते, उसमें भी 50% के करीब मिलता है. इसके लिए हम इसके क्या चीज चेक करें कि जो हमारे चांदी और सोना तो फिर भी ठीक है, चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं आने वाले समय में बर्तन खरीदारी करते हैं तो वहाँ ये बर्तन खरीदारी कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय है?
1: नितिन जी, आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं. देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है. लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास का है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है.
2: इसमें एक चीज उन्होंने और पूछी थी कि इन चीजों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
1: नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए, बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता है.
4: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस के लिए,
1: किस पर्पस से, अगर आप आगे देना चाहते हैं या आगे रिटर्न के लिए शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस, आपका बाकी सभी बढ़ रहा है तो आप वो
4: प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा
1: प्रोपोर्शन में. हाँ जी, तो आप वो खरीद के रख सकते.
4: जी जी. भिलाई से वी हैव रवि. रवि स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
5: नमस्ते, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
1: गुड इवनिंग रवि.
5: मैडम, मुझे जानना,
2: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से,
4: द कॉल ड्रॉप्ड, बट मीनवाइल we'll move on to our next story. Bharat Electronics Limited, BEL, Bell, today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose around 25.3% year-on-year to 5,533 crore rupees. Bell's standalone net profit increased by nearly 8.2% to over 1,048 crore rupees on an annual basis.
2: आगे बढ़ते हैं. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया. हांगकांग के हैंगसिंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई.

0: सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की बात करें तो आज प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक जर्मनी का डेक्स 1.7% से ज्यादा ऊपर पहुंच गया। फ्रांस का कैक 41% के लाभ में था और लंदन के फुटसी 100 में 0.6% उछाल देखा गया। दीपशिखा, लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देखा गया, उसका फिर गिरावट का रुख आया। अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है, तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
1: देखिए, जियोपॉलिटिकल असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के, जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट, खासतौर से अगर आप देखें कोरियन बाजार जो है, जो पिछले समय काफ़ी गिरावट उसमें देखी गई थी, तो वहाँ ये थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ।
0: सिंगापुर की अगर बात करें तो वहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा ही एक बैलेंस्ड रवैया अपनाया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर डॉलर का जो पेमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान ना हो, इसका भी असर पड़ सकता है मार्केट पर?
1: बिल्कुल, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, हर देश जो है अपना जियोपॉलिटिकल जो असर है वेस्ट एशिया क्राइसिस का, उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके देख रहा है। तो सिंगापुर में भी ये कोशिश की गई है, उसका भी असर डेफिनेटली उनके बाजार पर दिखाई दे रहा है।
2: So Deepshikha, when we see, and we were talking of volatility earlier, and when we see fluctuations of volatility in Indian market and other Asian and other markets, do you feel that because of India's dependence on crude imports, what's happening in the Gulf region is likely to affect our markets much more than the others?
1: Absolutely, Gaurang. Indian markets, Indian economy, we are largely import dependent for our crude requirements, and we saw how rupee came under pressure. We had a pull out of foreign portfolio investors. They have now begun to come in, which is a very good news for the Indian markets. So definitely, if something really severe, like I said earlier, if the conflict resolves, if you have a durable resolution to the conflict in West Asia, it would be a great positive for the Indian market. But definitely, if it goes into crisis mode, if there are more complications and crude spikes, it's again a big negative for India, much more than other countries.
2: From Jaipur, we have Jitendra now, our next caller. Jitendra, welcome. Please ask your question.
3: हाँ मैडम, जैसे अभी प्राइवेट बैंक के 5-6% शेयर जो है डाउन हुए थे, तो मैंने निफ्टी 50 से जो है एक दो परचेज किया और हर एक महीना करूंगा, तो ठीक है क्या मेरा करना प्राइवेट बैंक का?
1: जितेंद्र जी, फाइनेंशियल सेक्टर, खासतौर पे जो बैंक्स हैं, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी भी बहुत बेहतर रही है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है फाइनेंशियल सेक्टर का परफॉर्मेंस जो है आगे भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में बेहतर रहने की उम्मीद है।
2: एंड इफ देयर इज, अगर पहले बैंकिंग सेक्टर आपके पास नहीं है और आपने लिया, तो
1: डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा।
2: We have now to take a look at the crude oil prices. Global crude oil prices plunged around 7% today after the United States and Iran paused military strikes over the weekend. Brent crude was trading 7.6% down at $89.43 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 6.8% down at $83.26 per barrel when reports last came in. So again, Deepshikha, we were talking, and as you said, because of the pause, I think crude oil is down today, and so there is movement. But this has been quite a substantial movement in the downward direction.
1: Absolutely, because if you look at, OPEC is also sort of, they've not pulled back on the production. There's Venezuela also adding to the market. So there is crude available. So despite, if you look at, not when the crisis was like at its peak, but after that, crude has sort of stabilized. So unless, something really drastic happens, we expect the crude to remain stable in this range possibly. again, you know, I qualified it.
2: I know. It's absolutely understandable, because these are just opinions and, you know, I think based on your experience and also, you know, trying to moderate a path, because we really don't know what's going to happen.
1: Yeah, exactly.
2: Next caller from Bhilai, Ravi. Ravi, welcome. Hi. Please ask your question.
4: Good evening. Mutual fund only portfolio management service करके आज कुछ एक सेबी ने कुछ नया decision लिया, उसका investors पे क्या impact होगा, क्या फायदा है उसका? Thank you.
2: So Ravi, we have a special program on mutual funds, and I think it's an important decision. We would request you to tune in to our mutual fund program, and there the expert will come and give you exactly the advice that you want, because we don't have much time. That's why we would really value your time also, that you get the expert from the best expert, which is a mutual fund expert.
0: दीपशिका, हमने देखा कि लास्ट वीक में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 तक पहुंची, उसके बाद अब लगातार ये गिरावट का रुख दे रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो इस महंगाई और चालू खाते के घाटे के संदर्भ में अगर देखें तो कैसा आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी और उसका असर नो डाउट मार्केट पर जरूर पड़ेगा?
1: बिल्कुल, देखिए इन्फ्लेशन पर तो बहुत ही पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि क्रूड गिर रहा है, बराबर हमारा आयात बहुत ज़्यादा होता है, और करंट अकाउंट के लिए भी आपने जो पूछा उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव है क्रूड का गिरना।
2: In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading nearly 0.7% up at 1,44,750 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% up at 2,24,510 rupees per kilogram a short while ago.
0: Multi commodity exchange में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.6% बढ़कर 1,43,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% की बढ़त के साथ 2,23,862 रुपए पर थी। देवशिका जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद निखिल।
2: Absolutely, thank you for coming on to our program. Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, namaskar. Namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सेंडर पालिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। और ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून 2024 में संशोधन करेगा। ये विधेयक का परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शिक्षाविद और UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। प्रोफेसर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
3: धन्यवाद और सबको नमस्कार।
2: प्रोफेसर यादव, जो ये विधेयक आज पेश किया गया लोकसभा में, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप वर्तमान परिदृश्य में कैसे आंकती है? किस तरह से हमारे ये पब्लिक एग्जामिनेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है?
3: जी देखिए, एक तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो अभी जो हम युवा पीढ़ी को थोड़ा असंतुष्ट, थोड़ा परेशान, एजिटेटेड देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार इसको रोकने में पीछे नहीं हटेगी, ये

0: आश्वासन की तुरंत पूर्ति है। लेकिन यह संशोधन विधेयक है, सरकार 2024 में भी पहले ये विधेयक ला चुकी है और क्योंकि उसके बाद भी प्रश्न पत्र लीक हुए और एक नहीं अनेक स्थानों पर लीक हुए और उससे बच्चों का विश्वास इन परीक्षाओं से लगभग उठने लगा था, इसलिए यह विधेयक संशोधन आया है। और विशेष तौर पर यह सार्वजनिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाने का उद्देश्य रखता है। और परीक्षा प्रणाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल अगर आप देखें अपने आसपास तो युवा को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उनकी भी गलती नहीं है अगर वो कहीं असंतुष्ट होते हैं तो, क्योंकि एक तो वो जो आप परीक्षा पास करते हैं अपनी डिग्री के लिए, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कहीं प्रवेश परीक्षा है, कहीं प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो सार्वजनिक नौकरियों के क्षेत्र में हो। इसलिए शिक्षाएं महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता लाना और सबसे बड़ी बात उसमें विश्वसनीयता लाना, ताकि यह पीढ़ी उन पर विश्वास कर सके, ताकि प्रत्येक प्रतियोगी और अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके, यह इस विधेयक का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
1: जी,
0: साथ ही यह रोक लगाने का भी काम करना चाहता है, नकल पर रोक, प्रश्न पत्र के लीक होने पर रोक, क्योंकि वो बड़ी गंभीर चुनौतियां बन गई हैं इस समय और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, मतलब मुझे तो बहुत ही कड़ी लग रही थी ये कार्रवाई जब मैंने इन प्रावधानों को पढ़ा, क्योंकि बेईमानी करते समय थोड़ा डरे व्यक्ति
1: जी
0: कि मैं जितना कमाऊं इसमें से उससे अधिक मेरा दंड में लग जाएगा, यह शायद एक भय उनके मन में ये विधेयक लाना चाहता है। और फिर एक इम्पर्सोनेशन बहुत बढ़ने लगा है, जो ये हमारी युवा पीढ़ी है आसानी से चीजें प्राप्त भी करना चाहती है, तो मैं नहीं मेरी जगह ये परीक्षा दे ले, विशेष तौर पर दोज हु कैन अफोर्ड इट, उस पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात है और दोनों को सजा देने की भी बात। फिर अब मात्र ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, जब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं एक प्रकार से ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, तो संगठित शिक्षा कदाचार भी बड़ी समस्या है और बड़ा अपराध भी हो गया है। तो यदि कोई गिरोह या संगठित समूह प्रश्न पत्र लीक कराए, नकल में या परीक्षा में धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां आरंभ करे या उनमें शामिल हो जाए, तो उसके विरुद्ध यह विधेयक संगठित कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई करने की बात करता है।
1: जी बिल्कुल,
0: उसका उद्देश्य ये भी है, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा, मेरिट पर आधारित चयन को प्रोत्साहन और परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही या उत्तरदायित्व सुरक्षित करना भी इस विधेयक का उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है पब्लिक एग्जामिनेशंस का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, उसमें पारदर्शिता लाना, उसमें जिस तरह का चैलेंजेस हमने हालिया दिनों में देखे हैं वो फिर ना उत्पन्न हो और उत्पन्न हो तो उनका तुरंत निवारण हो, उस संदर्भ में जिस तरह से आपने एक तो आपने जिक्र किया कि जो जेल टर्म्स हैं या जो जुर्माना है उनको काफी हद तक बढ़ाया गया है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या इंस्टीट्यूशंस हो, हर एक कैटेगरी में उनको बढ़ाया गया है ताकि एक डर हो ऐसा कुछ भी ऑफेंस करने से पहले, जो हमारे सारे लाखों छात्रों को प्रभावित करता है। और दूसरा, जो जिस तरह से जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसको त्वरित करने की जो बात की गई है, उसको एफिशिएंट बनाने की बात की गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की गई है और उसमें डे टू डे बेसिस पर, ये नहीं कि दो या तीन हफ्ते बाद की तारीख होगी, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल्स, और वो तीन महीने में उन ट्रायल्स को पूरा करना, इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखती हैं?
0: देखिए, बिल जो है ये कहता है कि जो कोर्ट्स होंगे वो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में काम करेंगे, विद डे टू डे हियरिंग, ट्रायल्स टारगेटेड टू कंक्लूड, तीन महीने के अंदर वो समाप्त हो जाएं, चार्जशीट होने के, और एक सेंट्रल स्पेशल टास्क फोर्स की भी बात करता है, ताकि हाई स्टेक्स पेपर्स लीक जो होते हैं या इंटर स्टेट और क्रॉस स्टेट पेपर लीक जो होते हैं, अंतर्राज्यीय होंगे, उनको ये देख सके और उन माल प्रैक्टिसेस को देख सके, और साथ ही स्पेशलाइज प्रोसिक्यूटर्स की भी बात करता है, हु आर डेडिकेटेड टू एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिस केसेस, और एक और बात भी है, एक नया अपील मैकेनिज्म की भी ये बात करता है कि किसी भी ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सके डिवीजन बेंच और हाई कोर्ट में या फिर हायर कोर्ट में विद इन 3 months ऑफ एडमिशन, क्योंकि आप ये प्रायः ये माना जाता था जो सिविल केसेस होते हैं भारत में
1: जी,
0: उन सिविल केसेस में कोई जल्दबाजी करता ही नहीं है
1: जी,
0: और जब तक आप पुलिस को भी संतुष्ट कर लें तो फिर वो और भी देरी हो जाती है, और आप जानते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था बनी है उसमें यदि संगठित गिरोह हो तो बड़ी आसान व्यवस्था को भी प्रभावी कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो डिले तो कर ही सकते हैं। अब इसमें यदि डिले होता है तो नेचुरली

0: बच्चों के तो साल जा रहे हैं ना,
1: जी
0: उनका उनका हर साल, उनका हर महीना महत्वपूर्ण है। उस रूप में ये एक बहुत त्वरित न्याय का आश्वासन देने वाला कानून है, विधि है, और संशोधन भी ऐसे ही किए गए हैं ताकि जो पुरानी हमने देखी थी कहीं कहीं ढील है उस विधि में या कानून, उसको दूर किया जाए और बच्चों को और युवा पीढ़ी को, और मात्र युवा पीढ़ी को नहीं, उनके माता पिता को भी, पूरे समाज को ये विश्वास हो कि पेपर लीक की समस्या या नकल रोकने की समस्या कोई छोटी सी समस्या नहीं है, एक बड़ा अपराध, उसको बड़े अपराध में देखा जाए, यह इस विधि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसकी सजा भी बढ़ाई है, देखिए 3 से 5 पहले वो 5 से 10 साल कर दी है, उससे भी अधिक जो फाइन बढ़ाया है वो तो बहुत ही अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी डिटरेंस के रूप में, निवारण के रूप में, निवारक प्रभाव ये पैदा करे, यह इसका उद्देश्य है। और प्रक्रियाओं में देरी भी कम होगी। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, भारत संघीय व्यवस्था है, ये रखा गया है कि स्पेशलाइज्ड प्रोसिक्यूटर्स हों राज्यों में भी, यूटीज में भी, अपील मैकेनिज्म भी मजबूत हो, और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारें भी इस प्रकार की कानून यदि पास करेंगी तो सच में इसका अर्थ युवाओं के लिए और पूरे समाज के लिए, और समाज के बाहर मैं कहूंगी राष्ट्र के लिए, बस बन पाएगा।
1: जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि जब जुर्माना बढ़ाया जाता है या जो जेल सेंटेंस है उसकी अवधि बढ़ाई जाती है तो एक डेटरेंट के रूप में काम करता है, एक तरह से आपको जैसे एक का डर होता है कि आप ये ऑफेंस ना करें या आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए आपने जैसे अभी बताया पनिशमेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए भी है जो मिनिमम सेंटेंस है वो पहले 5 वर्ष था अब 7 वर्ष है, और पहले 1 करोड़ जुर्माना था उसे बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। जी, और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी उनको कहा है कि उन्हें आपको 4 साल के बजाय 8 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करने से। ये आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लेवल पर जो है इस तरह की रोकथाम लगाई जाए?
0: जी, इसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि अभी जिस प्रकार का विशाल और विस्तृत परीक्षा व्यवस्था हमारी बन गई है, ये पूरी संस्था बन गई है, तो उसमें जो संस्थाएं परीक्षा करवाती हैं वो नेचुरली अपने आप में पर्याप्त नहीं होती, और उनको बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा CUET में, नीट में, नेट में, सभी में बहुत सारे, और इवन फॉर UPSC फॉर दैट मैटर, तो इन सभी में हमें बहुत सारे सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता होती है, और उसमें प्रिंटिंग, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी सहायता, परिवहन, अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली बहुत सी एजेंसियां, इसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब उनकी मिलीभगत से, उनकी लापरवाही से, उनके लालच से, उनकी ग्रीड से कहीं भी इस सेवा में बाधा आ सकती है, इसलिए उन सेवा प्रदाताओं को भी इसमें उत्तरदायी बनाया गया है और उनके लिए भी निवारक प्रभाव कठोर दंड से पैदा करने का प्रयास किया गया है। नहीं तो ये मान लिया जाता है कि हमारा क्या, वी वर ओनली सर्विस प्रोवाइडर्स, और अभी तक उनको कोई सोचता भी नहीं था, उनकी भी जिम्मेदारी की गई है। और एक चीज जो अभी तक मैं भी नहीं कह पाई हूँ, तो साइबर अपराध जो इसमें अब शामिल हो गए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल तकनीकों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं
1: जी,
0: तो डेटा सुरक्षा, सर्वर सुरक्षा, इंक्रिप्शन, डिजिटल निगरानी, इन जैसे उनकी भी आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि साइबर अपराध मात्र राशि के क्षेत्र में या पैसों के क्षेत्र में नहीं बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध जहां जहां हम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, डिजिटल सेवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वहां वहां ये बढ़ते जा रहे हैं। अब भी हम डिजिटल सेवाओं की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ देना चाहती हूँ कि हमें सरकार ने वादा किया है कि अगली बार से ये कंप्यूटर पर होंगी परीक्षाएं, तो वहां भी हमें डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, इनकी विशेष प्रावधान बनाने होंगे, रखनी होगी, इनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मशीन अपने आप में तो कुछ नहीं करती, लेकिन मशीन को यूज करने वाले, मशीन का रख रखाव करने वाले तो व्यक्ति ही होते हैं, संस्थाएं ही होती हैं, तो उन संस्थाओं में और उन व्यक्तियों में भी अंततः इस विधि का, इस कानून का डर हो, भय हो। और साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात, अगर आप थोड़ा और समय दें मुझे, तो इससे भी बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ, ये तो विधि है, ये दंड है, ये अपराध है और उसको रोकने की व्यवस्था है, परंतु इन सबसे बड़ी नैतिकता है। जब तक वो नैतिकता व्यक्तियों और संस्थाओं में नहीं आएगी, और एक शिक्षाविद होने के कारण मैं भी अपराधी महसूस करती हूँ कई बार स्वयं को, क्योंकि जो पीढ़ी निकाली है, ऑल्दो ये पीढ़ी हमारे बाद की पीढ़ी है, जो पीढ़ी रहे हैं उसमें नैतिकता और शॉर्टकट चुनने की जो एक इच्छा

0: हमेशा बनी रहती है, उस इच्छा से मुक्ति, ये जब तक हम बच्चों में नहीं लाएंगे और माता में बड़े स्वप्न देखने की इच्छा और उन स्वप्नों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की इच्छा, वह भी बच्चों आकांक्षाएं हैं, वो सपने हैं वो, लेकिन उन सपनों से भी कहीं ना कहीं बच्चों पर भार पड़ता है और फिर ये सब कर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जहां अपराध होते हैं, पेपर लीक, नकल करना आसान लगता है, इम्पर्सोनेशन क्राइम नहीं लगता, अनैतिक नहीं लगता, और अंततः कोई भी शॉर्टकट मिल जाए, चाहे वो पैसे के माध्यम से मिले, चाहे वो प्रभाव के माध्यम से मिले, हर व्यक्ति उस तरफ चलना चाहता है। तो बच्चों को इनसे भी रोका जाए, माता पिता भी पर बोझ ना डालें, तो मैं समझती हूँ अपराधों से मुक्ति अधिक आसानी से मिल सकती है।
1: आपने बहुत ही एक गंभीर बात कही और बहुत ही अहम पहलू है इस पूरे जो प्रकरण है उसका। एक और मैं आपका जो ध्यान जिस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी, आज सुबह पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने सभी एमपी से अपील किया था कि जो भी विपक्ष के हो, पक्ष के हो, सब जो डिस्कशन है एग्जाम रिफॉर्म बिल पर उसमें हिस्सा लें, अपनी ओपिनियंस दें और उनके आधार पर जो है जो व्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी, उसमें जो भी अगर हम कुछ और चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे तो उनको भी पूरा तरह से कंसिडर किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये एक जिम्मेदारी सारे सांसदों की भी बनती है कि वो इस पर एक मीनिंगफुल डिस्कशन करें विदाउट डिस्ट्रप्शन?
0: जी बिल्कुल बनती है। देखिए ये राजनीतिक विषय तो हो सकता है
1: जी,
0: लेकिन इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये बुनियादी जरूरत है और बुनियादी अधिकार भी है
1: जी।
0: और उस बुनियादी अधिकार की सुरक्षा और सब तक उसे पहुंचाना सभी सांसदों का, संपूर्ण सरकार का, हमारी पूरी विधायिका का कर्तव्य है।
1: सुषमा जी, लोकसभा में आज पेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और सबको नमस्कार एक बार फिर।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सख्ती की नई पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व सदस्य और शिक्षाविद प्रोफेसर सुषमा यादव। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है सांझ ढली का। सांझ ढली में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, इधर तो घटा उमड़ भी गई, बरस भी गई और हम भीग भी गए। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सा ये समा है इस वक्त, और इस समा में बेहतरीन सा प्रोग्राम सांझले, जिसमें बेहतरीन से नगमे हम आपको सुनाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो नगमे हम लेके आए, वो नगमे हम आपको सुनाएं जो आपके दिल तक उतर जाएं और आपको ऐसा लगे कि अच्छा

0: ना हाय दिल का हूँ को देवला आँख करो ना चार अरे महंगा सौदा प्यार का कर लो खूब विचार
1: वे मार गया।

जी हाँ, कितना प्यारा सा नगमा था ना ये, और कितने साधारण शब्दों में अपने दिल की बात इस गीत ने दोहराई, गीत ने सभी को बताई, है ना। और कुछ भी हलचल नहीं थी, बस अपने मन की बात बहुत साधारण तरीके से इस गीत में बोली गई, कही गई, हम तक पहुंचाई गई। कितना प्यारा सा, बिल्कुल सरल सा। जी हाँ, ऐसे ही सरलता हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सरलता में ना बड़ी सच्चाई होती है, और जो बनावटी चीज़ें होती हैं अक्सर अलग दिख जाती हैं। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि सच्चे रहिए, साधारण रहिए और निर्मल रहिए। कोशिश करें कि इस तरह का स्वभाव रखें कि दूसरों के दिल में तुरंत दस्तक दे जाए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी

0: आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
0: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो गीत सुना, फिल्म गीत गाया पत्थरों से था, और अभी जो आप गीत सुनेंगे वो फिल्म बावर्ची से है।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माली बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। एक रिपोर्ट।
8: 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों के कारण उसे रद्द करने और दोबारा नीट परीक्षा कराने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह की एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह देखेगी कि सरकार की ओर से नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर्ड टास्क फोर्स नीट परीक्षा को ऑनलाइन कराने के बारे में क्या सुझाव देती है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि कुछ अलग तरह के सुझावों की जरूरत है, खासकर तब जब नीट परीक्षा को फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में बदला जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास सुशासन सुधारों और प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में श्रीमती गुप्ता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा जैसे पहलों से सरकार लगातार काम कर रही है।
9: जिस तरीके से पेपर लीक केस में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई और केवल बनाई नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें निर्णय लेना होगा और मुजरिम को सजा दिलवानी होगी। इसी लोकसभा के सत्र में ये सख्त कानून लेके आया जा रहा है, 10 साल तक की कड़ी जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, और भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो इसलिए ये एग्जाम अब CBT के माध्यम से करवाया जाए।
7: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों से नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। दक्षिण जिला नवाचार परिषद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि उद्यमिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। दिल्ली सरकार ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां छात्र स्कूल स्तर से ही नवाचार और रिस्क लेने की भावना विकसित कर सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। एक रिपोर्ट।
10: पिछले वर्ष 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को मुख्य याचिका के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय के 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अनुचित नहीं है, क्योंकि ये FIR पर आधारित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
7: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा लगातार दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भाजपा पार्षद सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। एक रिपोर्ट।
11: पदभार ग्रहण करने के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि उनकी कार्य योजना स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, सुशासन और सशक्त निगम के 5 प्रमुख संकल्पों पर आधारित होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा तथा जनहित के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि निगम की विकास परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा करने, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
7: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, जल भराव की रोकथाम, मॉनसून संबंधी रोगों से बचाव, टोल प्लाजा पर यातायात जाम, पीएम उदय योजना और सड़क कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के रिज क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से पारिस्थितिक पुनर्स्थापन

0: अपन अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 120 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,00,000 देसी पेड़ और 81,700 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, जामुन, शीशम, पलास और खिजड़ी जैसे प्रजातियां शामिल है। ये पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए 70,00,000 पौधारोपण मिशन का हिस्सा है। इसमें DDA को 23,00,000 देसी पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष अब तक दिल्ली में 8,29,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य जैव विविधता बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी ताप प्रभाव कम करना और दिल्ली के प्राकृतिक वन तंत्र को पुनर्जीवित करना है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने चौखंडी और ख्याला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत जितनी जरूरी है उनका समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होना उतना ही आवश्यक है। पश्चिमी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कार्यों के कारण बुधवार सुबह 10 बजे से बृहस्पतिवार दो बजे तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि इस दौरान राजौरी गार्डन, तिलक नगर, टैगोर गार्डन, विष्णु गार्डन, सुभाष नगर, ख्याला, राजा गार्डन सहित कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर लोग पानी के टैंकर मंगाने के लिए 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 250 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक स्कूटी बरामद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और पटना के बिहार संग्रहालय ने प्रदर्शनियों, विद्वानों की चर्चाओं, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी बातचीत को बढ़ावा देने और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक संयुक्त पहल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आज से एक सप्ताह तक चलने वाली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।
1: मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया, खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी सरकार खेल अवसंरचनाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
2: ये बहुत गर्व का मोमेंट है और दिल्ली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटी देने के लिए और लगातार दिल्ली में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें।
1: इसके अलावा श्री सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है बल्कि विभिन्न देशों के बीच मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल भावना को सशक्त बनाने का अहम अवसर भी है।
3: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए दिल्ली में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। खेल, दोस्ती और बेहतरीन प्रदर्शन की भावना से जुड़े 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है।
1: 2 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत सहित कॉमनवेल्थ के 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीराबाई चानू को स्कॉटलैंड में हो रहे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण जीतने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतना उनकी असाधारण मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये मीराबाई चानू की शानदार खेल यात्रा का एक और गौरवपूर्ण अध्याय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथु पंडे को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी मिसाइल तकनीक, नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने

0: भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज शाम तेज वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीष शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया। नीट प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्षी दलों से आज शाम तक सहमति बनाने की भी अपील की। सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं आपको 3 घंटे का समय देता हूं, शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश और दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव भी है।
शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा, फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 बजे कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि

सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खरगे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खरगे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खरगे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृह मंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। ये विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की
अपील

की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ईशा सिंह ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा, मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। भारतीय बॉक्सर सचिन सेवाच ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयम्बटूर में खेली जाएगी। और भारतीय पुरुष टीम वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम कॉम्पिटिशन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनके साथ मनु भाकर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। भारतीय निशानेबाजों का चीन के हांगझोऊ में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निशानेबाज ईशा सिंह ने आज महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: ईशा ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में से 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। उन्होंने मेजबान चीन की युए झांग को पीछे छोड़ा। झांग ने 37 अंक के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में मनु का सामना उत्तर कोरिया की योन ग्योंग पाक से हुआ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन डबल

0: विशेष लगातार कल भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया विशेष, और आज भी ज्ञानेश्वरी का कैसा रहा आज का उनका प्रदर्शन?
1: जी प्रशांत, ज्ञानेश्वरी ने मेडल टैली में भारत के लिए एक और पदक जोड़ दिया है। उन्होंने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो समेत कुल 199 किलो वजन उठाया। ये जो खिलाड़ी हैं, ये छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव भोंडिया से आती हैं, उसके बावजूद उन्होंने रजत पदक जीत कर यह दर्शाया है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, जीतने का जज्बा सब पीछे छोड़ देता है। इसी के साथ साथ ज्ञानेश्वरी एशियाई चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक विजेता रह चुकी हैं। स्नैच में ज्ञानेश्वरी ने 3 लिफ्ट शानदार किए और क्लीन एंड जर्क में शानदार उनका जो सफर था वो चुनौतीपूर्ण रहा। ज्ञानेश्वरी ने 107 किलो वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन ओनोमे ने तुरंत ही 110 किलो वजन उठाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज्ञानेश्वरी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, जिन्होंने 111 किलो वजन उठाकर फिर रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि यह रिकॉर्ड 1 मिनट ही उनके नाम रहा और ओनोमे ने 113 किलो वजन उठाकर रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। भारोत्तोलन में यह भारत का चौथा और कुल 5वां पदक है।
0: विशेष, ज्ञानेश्वरी ने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया ही है और पदक देश के नाम किया, लेकिन अन्य खेलों में भी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। बहुत सारे खेलों में खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है, तो कुछ खेलों में निराशा हाथ रही। कैसा रहा उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन आज?
1: जी अगर प्रशांत अन्य खेलों की बात करें तो आज का दिन भारत के लिए काफ़ी मिला जुला रहा है। धावक तेजस सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में जगह बनाई है और इसके साथ ही उन्होंने भारत के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए एक और उम्मीद जगाई है कि शायद भारत इसमें पदक जीत सके। वहीं ऊंची कूद में मुरली श्रीशंकर ने अपनी पहली छलांग में 8.01 मीटर की दूरी तय करके ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पूरा करते हुए पुरुषों की लॉन्ग जंप के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने ये सब पहले ही प्रयास में कर लिया।
0: हालांकि अगर हम बात करें विशेष, जो गुरिंदर वीर सिंह है, जिनका रांची में जो इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन आज गुरिंदर वीर सिंह जो है दूसरे स्थान पर है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनसे सभी को उम्मीदें थी।
1: जी उनके लिए आज बहुत ही निराशा उनको हाथ लगी। 100 मीटर दौड़ में जहां नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरविंदर सिंह जो है वो आगे ही नहीं बढ़ सके। अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले रहे थे वो, और 25 वर्षीय खिलाड़ी जो है 10.39 सेकंड का समय निकालकर जमैका के रोहन वॉटसन से पीछे रह गया और वो सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए काफ़ी नहीं था।
0: और अगर विशेष सचिन सिवाच की भी बात की जाए तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया आज। कैसा रहा उनका खेल प्रदर्शन आज?
1: देखिए, सचिन सिवाच ने आज विलियम हेविट को हराया है और 60 किलोग्राम बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में वो पहुंच गए। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड के जो विलियम हेविट हैं उनको 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ सचिन ने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत की मेडल की उम्मीदों को जिंदा रखा और ग्लासगो गेम्स में पोडियम की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है।
0: बहुत सारे गेमों के बारे में आपने विशेष बताया, लेकिन और कौन से गेम अभी चल रहे हैं और किन पर और निगाहें होंगी?
1: प्रशांत, इस समय महिलाओं के 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में बिंदिया रानी देवी का मुकाबला जो है वो जारी है। वहीं आज रात 10:05 पर लॉन बॉल के भी मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स में राउंड 5 में आज पुतुल सोनोवाल प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। उनका मुकाबला आज अनवर हमादा से होगा। और भी मुकाबलों की अगर आप बात करें तो रात 12:30 से पुरुषों के 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में वल्लूरी अजय बाबू जो है वो खेलते दिखेंगे।
0: और विशेष, ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात। कल जादूमणि और प्रीति ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उन्होंने उम्मीद भारत की जगाए रखी है।
1: जी बिल्कुल, पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में पाकिस्तान के रहमान को 5-0 से हराया है। जादूमणि ने पहले राउंड को 3-2 से अपने नाम किया था। दूसरे राउंड में सभी जजों ने उनको 10-10 अंक दिए। इससे पहले राउंड ऑफ 32 में ये जो भारतीय मुक्केबाज हैं, उन्होंने स्कॉटलैंड के एरोन कुलेन को 5-0 से हराया था। वहीं प्रीति ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया 54 किलोग्राम में और वह पूरे मुकाबले में बहुत ही हावी नजर आई अपने प्रतिद्वंदी पर, और ये जो मुकाबला है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जीत लिया।
0: लगातार भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अगर हम कल के खेलों की बात करें तो भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई है।
2: Much better than the first, and there it is, locked away. A true star of Commonwealth Games weightlifting.
3: Chanu Mirabai.
2: More records again for Mirabai Chanu. Gold medal. Commonwealth Games.
0: महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के स्नैच में 85 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने नया कीर्तिमान बनाया। नाइजीरिया की रजत पदक विजेता रुथ असुकुओ नियोंग ने स्नैच में 75 और क्लीन एंड जर्क में 93 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान और मलेशिया की आइरीन हेनरी ने कुल 167 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना

0: उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत इमोशनल भी हूँ, सब कुछ है। और खुश इसलिए कि मैं काफी सेक्रीफाइस और बहुत सारे टेंशन इंजुरी से लेके गेम्स तक आके मैंने मेडल दिया है। पहला इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश।
0: वहीं वेट लिफ्टर राजा मुथुपंडी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए रजत पदक जीता।
2: Raja Muthupandi, what a result this is. So, Commonwealth Championship silver last year, now Commonwealth Games silver in Glasgow.
0: क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 158 किलोग्राम और 160 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाया, लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में 170 किलोग्राम वजन नहीं उठा सके और दूसरे स्थान पर रहे। राजा ने रजत पदक जीतने का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया।
3: क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैंने टाइम लाइक लास्ट 23-24 नेशनल्स में मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद मोदी नगर में 2 साल से ट्रेनिंग किया वेट लिफ्टिंग वॉरियर्स में, इसी के लिए हमने प्रिपरेशन किया। डिसअपॉइंटमेंट तो हूँ, क्योंकि जैसे मेरा ऊपर मेरा कोच भी ट्रस्ट किया था कि हम गोल्ड के लिए हम पूरा एफोर्ट लगाएंगे, लेकिन मैंने अच्छा नहीं किया।
0: वेट लिफ्टर ऋषिकांत सिंह चनम्बम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 121 किलोग्राम वजन उठाकर स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा और रजत पदक अपने नाम किया। रजत पदक जीतने के बाद ऋषिकांत सिंह ने अपना अनुभव साझा किया।
4: पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसने हमारे स्पोर्ट के लिए बहुत बेनिफिट दिया, सभी ने तो जानते हैं। इसके बाद वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट श्री संदीप यादव सर एंड वेट लिफ्टिंग का चीफ कोच श्री विजय शर्मा एंड स्पेशली फ्रॉम मणिपुर ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडलिस्ट मेरा भाई जनू, मेरा जो दीदी है वो, इसको मैं क्रेडिट दूंगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आज 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
5: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथुपंडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: इस बीच खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कांस्य पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार से मुलाकात की और उन्हें 10 लाख रुपए के नकद इनाम से सम्मानित किया। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स, जो टेबल टेनिस दिल्ली में शुरू हुआ है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
6: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: इस बीच श्रोताओं, आपको बता दें कि शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने आज इस प्रतियोगिता में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए जिम्बाब्वे और मालदीव को 3-0 से हराया। पुरुष वर्ग के ग्रुप ए के मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मानव ठक्कर ने ताइना मोमवोमा को 11-3, 11-2, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद अनुभवी हरमीत देसाई ने तापीवा मुसारुवा को 11-5, 11-4, 11-5 से शिकस्त दी। युवा खिलाड़ी पायस जैन ने विक्रम सिंह को 11-3, 11-3, 11-8 से पराजित कर भारत की 3-0 की एक तरफा जीत सुनिश्चित की। बात हॉकी पर, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप कल से कोयंबटूर में शुरू हो रही है। 12 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में देश भर की 30 टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब एक नजर क्रिकेट पर भी डाल लेते हैं। भारत ने कल जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 में हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप की थी। वैभव

0: सूर्यवंशी ने अंतिम मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ श्रृंखला के प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब जीता। उन्होंने इस खिताब को जीतने के बाद अपने अनुभव साझा किए।
1: प्लेयर ऑफ द मैच होना इंडिया के लिए खेल के सीनियर इंडिया में और प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं थैंक यू भी बोलूँगा जिन्होंने मेरे जर्नी में सपोर्ट किया मुझे। थैंकफुल हूँ कि सीनियर्स इस तरीके के हैं और कोचिंग स्टाफ भी तरीके से, हमारे हेड कोच VVS सर ने, ऋषि सर ने मुझसे मैचेस से पहले बात किया, मुझे बहुत कुछ मेरे से डिस्कस किया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम पे मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले, मुझे क्या लग रहा है, मैं किस माइंडसेट में हूँ। और उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था कि तू बस खेल बिंदास, कुछ सोचना नहीं है। और सीनियर भी मेरे आसपास जो है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेला सा हूँ या फिर सीनियर टीम में आया हूँ, सब वैसे ही लगता है जैसे मैं सारे मैचेस हर जगह पे खेलता उस तरीके के। और ईशान भैया जैसे, वो भी हमारे बिहार से ही है तो थोड़ा सा वाइब मैच कर जाता।
0: बात स्क्वाश पर, ओंटारियो में भारत ने वर्ल्ड स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जबकि महिला टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज की। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
4: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
5: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।

0: हवा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण

0: उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने के अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सों जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331 4181 2371 107 107 106 और 2331 4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल एट यायार न्यूज अलर्ट्स पर भी हैशटैग आस्क यायार के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन यायार और दूरदर्शन की डीटीएस सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहां से शुरू करना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं, मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में। और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं, उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एन्केफेलाइटिस है और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई है
0: जी।
2: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ हैं जो

0: उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं,
1: जैसे डेंगू के,
0: जैसे डेंगू का है, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे। उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है
1: जी।
0: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है,
1: रात के
0: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
1: अर्ली मॉर्निंग
0: का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं और खास करके
1: शिफ्ट में आते हैं
0: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की जरूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे, और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं, बीमारी नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में, और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल, बिस्लरी की बॉटल है या कप है, उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया तो उसमें भी ब्रीडिंग, तो और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
0: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक खास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है, और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगू में खास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में?
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
2: जी, ये तीनों बुखार जो है पोस्ट मानसून सीजन में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए, और जैसा सर ने बताया कि ये तेज दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है, आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता है,
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
2: में, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी
3: जी नमस्ते।
1: नमस्ते योगेश जी, अपना सवाल पूछिए।
3: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न है
1: जी।
3: पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
0: देखिए जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है,

0: ये बीमारियां, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी, आप कौन से जिले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया, हालांकि वो हमें सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।
0: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनक पदार्थ जो है वो लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए,
1: तो
0: इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है। बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है वो बहुत
2: कम। मोटे आंकड़े के तौर पर अगर देखा जाए तो एक से लेकर के 3% तक, ये डिपेंड करता है कई सारे चीज में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए जरूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जाँच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाए संक्रमण का?
2: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, या जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ये जिसकी की सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज़्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफीकोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रमाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर के सलाह पर ही आप उपयुक्त जाँच करवाएँ, और जाँच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
0: अभी
1: है?
0: एक योगेश जी का एक प्रश्न और था
1: जी।
0: कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का, तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार, चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें।
1: और कूलर की सफाई भी बहुत जरूरी है,
0: कूलर की सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं रगड़ना
0: जरूरी है। उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये संदेश
1: जी। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
3: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है, या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी कोई बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है?
2: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पारासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास हमारे साथ है। ये है केंद्रापाड़ा ओडिशा से जी।
4: नमस्ते जी।
1: आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं
4: जी। मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
0: देखिए
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो
2: शुरू में हम लोगों ने इसके
1: संबंध में अभी तक यही चर्चा कर रहे थे, फिर भी संक्षेप में एक बार फिर से बता दीजिए।
0: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय हैं फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी क्या कहना चाहते हैं आप?
5: जी मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसके उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई का प्रयोग करके ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में।
2: अमित जी आपका विचार बहुत उत्तम है, शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें, वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है। और ये और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरे बाजू वाले ये कपड़े पहने, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब पानी रिसीट कर जाता है, हाँ, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है, और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी
0: उसमें यदि 7 दिन से ज्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 डेज,
0: तो लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो, तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं, और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले DDT का होता था, आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है, और उसका प्रभाव काफी समय के लिए रहता है, तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।

0: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार जी।
0: सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर?
2: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
3: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है।
2: चलिए डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
4: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए ये 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
2: हमारे अगले श्रोता हैं राकेश शिमला से।
5: जी नमस्कार, मैं राकेश वाकरव को छाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
2: जी
5: जी, तो मैं मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है, अगर आप बच्चों को काटा है क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
4: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियाँ खुली नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
2: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
4: बिल्कुल।
2: पीयूष जी ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफी बातें की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
3: देखिए डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता। किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा बहुत ज़्यादा पैनिकी होता है।
2: रोज की संख्या देखी जाती है,
3: रोज उसकी संख्या देखी जाती है। तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज़्यादा जरूरी रहता है और इस दौरान हाइड्रेशन का अप्रोप्रिएट होना यह ज़्यादा जरूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जांच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए, डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है,
2: जैसे
3: कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जा करके करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा ना घबराएं। ऑल्दो एक लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
2: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
3: तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते का
2: पत्ते
3: या छाला, ये पीने की वजह पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूँगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब को ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूँगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
2: हर आदमी
3: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ 3-4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
2: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता। विजय जी।
6: जी कनक जी, नमस्ते।
2: नमस्ते,
6: विशेषज्ञों को नमस्कार।
3: नमस्ते जी।
6: हाँ, विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवाड़, तहसील शहर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
2: जी,
6: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
3: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें, और बस ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी,
2: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
3: तब वो
2: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाए। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
4: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है, और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो DPT का हो, पोलियो का हो, या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूडेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है,
2: भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं।
4: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
2: जी,
4: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं, जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
2: जी,
4: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे, तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका।
2: पीयूष जी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए, संक्षेप में
3: जी। इस ये इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी व्यक्ति हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें, यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी।
2: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है eirnsgtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
7: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
8: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
9: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
8: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहले स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: remains on heightened alert as several districts have reported fresh flooding, waterlogging, crop damage and losses to infrastructure. In Sikkim, border trade between India and China through the Nathula Pass will resume from the 1st of next month, ending a suspension that has been in place since 2020 due to the COVID-19 pandemic. Trade through Nathula had resumed in 2006 after remaining suspended for more than four decades. And Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver in women's 53-kilogram category at the Commonwealth Games in Glasgow today. Asian Championships bronze winner Gyaneshwari lifted 88 kilograms in the snatch section and 111 kgs in clean and jerk for a total lift of 199 kgs. Earlier, India's weightlifting queen Mirabai Chanu won the first gold medal for the country at the Games. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत ने जहाज हमले में भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। जेएएसी और अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा सैन्य हमले रोकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट आई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की और समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राजदूत से वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने पर भारत की चिंता यूक्रेन के अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा गया है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि कैस्पियन सागर में ईरान के वाणिज्यिक पोत पर हुए कथित हमले का जवाब अवश्य दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अजीजी ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई का सामना करने का संकेत भी दिया। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद आज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के रावलकोट में हजारों लोग मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने के लिए एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: ये मार्च 52 दिनों से चल रहे विरोध आंदोलन के बीच हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी बंदियों की रिहाई, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने आज पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने को कहा है। ये विरोध मार्च संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोगों की सुरक्षा और क्षेत्र में गंभीर स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: उधर बलूच नेशनल मूवमेंट की मानवाधिकार शाखा पांक ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान में अलग अलग घटनाओं में पाकिस्तानी अधिकारियों ने 4 बलूच लोगों को जबरन गायब कर दिया है। पांक ने इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। उसने कहा कि पाकिस्तान को जबरन गायब किए जाने की प्रथा को समाप्त करके और पीड़ितों तथा उनके परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे को सुनिश्चित करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 6.6

0: 1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ताज़ा जानकारी के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 5.8% गिरकर 84 अमरीकी डॉलर और 14 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमरीका सैन्य अभियान रोक देता है तो वो आगे और हमले नहीं करेगा। इसके बाद कीमतों में ये गिरावट देखी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दक्षिण पश्चिम हिस्से में अनियंत्रित जंगल की आग से निपटने के लिए आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आग के कारण फ्रांस में 2,50,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फ्रांस के गिरोंडे क्षेत्र में लगी भीषण आग ने पेरिस से 4 गुना बड़े क्षेत्र को तबाह कर दिया है, जहां स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अवकाश शिविरों पर रोक लगा दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिनी कोलोन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनके साझा लोकतांत्रिक मूल्य और दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध चुनावी सहयोग के लिए मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भारत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। भारतीय खगोलविदों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर निर्माण की प्रक्रिया में एक दुर्लभ ब्लू स्ट्रैगलर तारा BSS खोजा है। इससे तारों के निर्माण की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। मंत्रालय ने कहा कि स्वीकृत व्याख्या है कि ये तारे किसी साथी तारे से या तारकीय विलय के माध्यम से द्रव्यमान प्राप्त करते हैं, जिससे वे प्रभावी रूप से पुनर्जीवित हो जाते हैं। ऐसी निर्माण प्रक्रियाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी प्रमाण अत्यंत दुर्लभ है। भारतीय निशानेबाजों का चीन के हांगझोउ में चल रहे ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। निशानेबाज ईशा सिंह ने आज महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और देश का नाम रोशन किया। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। एक रिपोर्ट।
1: ईशा ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान जोरदार प्रदर्शन करते हुए 50 शॉट्स में से 40 अंक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। उन्होंने मेजबान चीन की युए झांग को पीछे छोड़ा। झांग ने 37 अंक के साथ रजत पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में मनु का सामना उत्तर कोरिया की योन ग्योंग पाक से हुआ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन डबल शूटआउट में मनु ने बाजी मारते हुए पदक हासिल किया। ईशा के स्वर्ण और मनु के कांस्य पदक के साथ विश्व कप में भारत के पदकों की संख्या अब तक 3 हो गई है। पदक तालिका में चीन 14 पदकों के साथ शीर्ष पर है और भारत 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है।
0: युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल

में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने जहाज हमले में भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। जेएएसी और अधिकारियों के बीच वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हुए। अमेरिका और ईरान द्वारा सैन्य हमले रोकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट आई। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

10:30 और 55 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर हर श्रृंखार। और आज के हर श्रृंखार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें।

प्यार का बंधन तो अनजाना ही होता है दोस्तों, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि प्यार तो जादू है जो हमारे दिल में बस जाते हैं। उनसे बहुत सी बातें करने का दिल करता है, मगर जब मुलाकात होती है ना तो उन्हें देखने से दिल कहाँ भरता है। जुबान तो जैसे खामोश सी हो जाती है और फिर हर बात जैसे आंखों से होती है।

अभिमान फिल्म से लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। 10:45 और 30 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं

जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार। आज के हर श्रृंगार में आपके साथ है अर्पना, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म हस्ते जख्म से आपके लिए गीत।

दोस्तों, कभी कभी आपको ये भी लगता होगा ना कि मुलाकातें जो हैं वो अधूरी रह जाती है जितनी बार भी आप मिलते हो। जैसे ऊपर वाला आपको इशारा कर रहा है कि ये मुलाकातों का सिलसिला हमेशा चलता रहे, क्योंकि अधूरी मुलाकातों को पूरा करने के लिए बार बार तुम मिलना पड़ता है। जैसे हम और आप यूं ही FM गोल्ड पर बार बार मिलते रहते हैं। अगला गीत होगा फिल्म बदलते रिश्ते से। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और 11:10 पर हमारी और आपकी जो अधूरी मुलाकात है उसे पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले भी आप सुनेंगे क्या, 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा, उसका आप पुनः प्रसारण सुनेंगे। और 11:40 पर आपके साथ रहूंगी गीत मेरे मनमीत में, मैं अर्पना। फिलहाल वक्त हो गया है 10:55, ये गीत आपके लिए और समाचार जरूर सुनिएगा इस गीत के बाद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और $0.74 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम डेविड को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gauran Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिकरवार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड दीपशिखा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines before we begin. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट।
0: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ। इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे। लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की।
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving the Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end their 5-day losing streak.
1: Sensex mein shamil

0: में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल में 5.6% से ज्यादा, इंडिगो में 4.9% से अधिक और इन्फोसिस में लगभग 3.7% की तेजी आई। इसके विपरीत HDFC बैंक में 0.4% की गिरावट आई और एक्सिस बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।
1: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks quality tilt advanced over 2.3%, IT rose 2.3% and realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined and 200 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि 5 दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई है। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
2: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निखिल जी रहा है आज बाजार में, जो अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है उस पे विराम अमेरिका ने लगाने की बात की है और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है और यही उम्मीद जो है बाजार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके अलावा देखिए यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज को बाजार देख रहा है। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो बाजार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बावजूद, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाजार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज और वो इसीलिए रिएक्ट इस तरह से किया है।
1: We'd like to share with you listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 2310481 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deepshikha, you know we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth story. So good results, as you said. And I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
2: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was expected in terms of performance.
1: Right. So the larger picture remains positive, green, and
2: that is
1: very, very optimistic.
2: That is what.
1: All right. And particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
2: Yeah.
0: Deepshikha ji, अभी जो मॉनसून की बात चल रही थी, जिस तरह से expectation थी कि मॉनसून का performance इस बार इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी results अगर हम देखें और मॉनसून को देखें, तो आपको क्या लगता है कि market आने वाले कुछ समय में कैसा चल सकता है?
2: देखिए, अगर आप मॉनसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफी हद तक पिकअप हो कर गई है। मॉनसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो आया है। अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया। तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ

0: बिल्ड अपॉन इट.
1: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. विक्टर जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
2: गुड इवनिंग सर.
0: गुड इवनिंग विक्टर.
2: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड. माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस मैडम. सो व्हाट विल बी द अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड ऑन द गोल्ड प्राइसेस बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द गोल्ड प्राइसेस.
0: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. If and also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10-15% of your portfolio.
3: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
0: Exactly.
3: And one of the diversifications is gold.
0: Gold.
3: You know, now do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
0: fluctuations. Exactly. You know, if there is a geopolitical, you know, crisis that we saw or, you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
1: Deepshika, abhi mid cap aur small cap ki hum baat kare to pichle kuch dino mein dekha gaya ki lagatar usme bhi giravat dekhi ja rahi thi, lekin aaj jaise kharidari bade paimane par hui to mid cap aur small cap mein bhi hame uchhal dekhne ko acha khasa mila hai. To ye rahat ka ek keh sakte hain ki asar hai ya matlab rahat ki baat hai kya abhi bhi isme volatility hame dekhne ko milegi, utar chadhav dekhne ko mil sakte hain?
0: Nikhil ji dekhiye, jis samay tak West Asia mein crisis ये जो है इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट, तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा. और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है. तो अगर स्टेबिलिटी वहां आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा. लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है.
3: राइट. सो दीपशिका, यू नो व्हेन वी टॉक ऑफ वोलेटिलिटी एंड यू आर सेइंग दैट इट्स बाउंड टू बी देयर, बट इज देयर समथिंग कॉल्ड रेंज बाउंड वोलेटिलिटी?
0: सो यू नो इफ यू लुक एट इफ टुमारो यू नो द पॉज इज लिफ्टेड, देयर इज अगेन अ क्राइसिस, देयर वुड डेफिनेटली इट वोंट बी रेंज बाउंड. So what I'm saying is, if you have a durable piece in West Asia, if it is durable enough, and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps will show a good movement. But this volatility, I can't say will be like range bound, especially because there is uncertainty in West Asia, on West Asia count.
3: So uncertainty filters down everywhere.
0: Everything.
3: Somewhere
0: exactly.
3: Trying to fix it, find where is the method in that. Uncertainty is uncertainty.
0: Uncertainty. Yes.
3: Right. We have a next caller from Gurugram, Tarun. Tarun, welcome. Please ask your question.
4: Hi, good evening. My question is, with respect to the diversification in the mutual fund portfolio, which of these two options is a better option? Investing in directly into a gold mutual fund or investing in the gold through a diversified or a liquid mutual fund?
0: I think it is best to keep a very best to maintain a balance.
3: Right. In fact, you know, Tarun, and this is what a lot of experts also believe, that balance is the key. So if you're saying which is the best, both of them have their pros and cons, and our mutual fund experts invariably will share those with you, have been over the past few programs. But if a particular kind of a fund suits you, I think based on your risk appetite and based on your balance that you want to create, but I think balance has been a key which is advocated by most people.
0: Absolutely. I mean, if you have a diversified portfolio, you need to sort of have a diversified portfolio, keep a very balanced approach towards it.
3: Right.
1: देवशिका, भी मार्केट की अगर हम बात करें तो देखा गया है कि लगातार कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं. जो ऐसे सेक्टर्स थे जो कहीं रुक रहे थे, उन्हें भी एक ग्रोथ मिल रही है. तो अभी हमारी जितने मतलब इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज की जब बात करते हैं, एक ग्रोथ रेट जिसका हम बढ़ाते रहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे सभी को एक पॉजिटिव वे मिले आगे बढ़ने के लिए. आपको लगता है कि जो छोटी कंपनियों में

0: निवेश करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा अगर वो सस्टेन करते हैं चीजों को तो उनको बड़ा मुनाफा मिलता है?
1: देखिए, छोटी कंपनी में अगर निवेशक निवेश करता है, एक वो रिस्क उसमें ज्यादा होता है, एक रिस्क एपेटाइट रहता है। तो जैसा कि मैं हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बेस्ट रहता है। आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज्यादा है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न उसी हिसाब से ज्यादा मिले। पर छोटे निवेशक हैं, बेहतर उनके लिए ये होता है कि वो रिस्क ज्यादा ना लें
0: जी।
1: तो उनका जो बेट है वो ऐसी कंपनीज पे रखें जिनका स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, देखें उसको, उसके परफॉर्मेंस देखें और तब घुसें उनमें।
0: और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, आपका प्रश्न पूछिए।
2: नमस्ते मार्केट पंथरा टीम।
1: नमस्ते शंकर जी।
2: मैडम, माय क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इन्फ्लेशन और व्हाटएवर, आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बट आवर रियल लाइफ इन्फ्लेशन लुक्स टू मी वेरी हाई, एंड बैंक्स डिपॉजिट्स फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स आर नेवर एबल टू यू नो कवर अप द लॉसेस, और इट नेवर एक्चुअली गिव्स बियॉन्ड द, इट गिव्स ऑलवेज लेस देन इन्फ्लेशन। सो हाउ आई मीन व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर अस टू सीनियर सिटीजन? It is one thing, but we are not in a position to take much risk. So where should we invest so that we are at least not at loss in FD, bank FDs? Thank you.
1: Shankar ji, this is a question which actually is a big dilemma for policy makers also. You know, when interest rates rise, they benefit the investors who have deposits in banks or who are earning interest on their income. But it is also, it pinches those who have taken loans, who are also, who can be middle class savers, who have taken home loans or some other loans. But yes, from investment point of view, definitely inflation is always seen as a tax. It affects not just savers but everybody else, even those who are going to purchase or households. Better would be to have a diversified portfolio, so you can also look at other investments, you know, just not bank FDs, but go beyond. And which is why we keep advising people to have a diversified portfolio, so that both your risks and returns are well balanced and met with.
0: दिल्ली से अगले श्रोता है नितिन हमारे साथ में। नितिन जी, आपका सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार नितिन जी।
3: नमस्कार, मैडम से ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गोल्ड और सिल्वर का रेट बताते हैं, तो जो उसका प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगे तो उससे रेट ज्यादा मिलते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं मिलते, उसमें भी 50% के करीब मिलता है। इसके लिए हम इसके क्या चीज चेक करें कि जो हमारे चांदी और सोना तो फिर भी ठीक है, चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं आने वाले समय में बर्तन खरीदारी करते हैं तो वहाँ ये बर्तन फिर शुरू कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय है?
1: नितिन जी, आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है। लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास का है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है।
0: इसमें एक चीज उन्होंने और पूछी थी कि इन चीजों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
1: नहीं तो जैसा कि मैंने कहा, ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए, बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता है।
4: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस के लिए,
1: किस पर्पस से अगर आप आगे देना चाहते हैं या आगे रिटर्न के लिए शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस आपका बाकी सभी बढ़ रहा है तो आप वो
4: प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा
1: प्रोपोर्शन में, हाँ तो आप वो खरीद के रख सकते हैं।
4: जी जी, भिलाई से वी हैव रवि। रवि स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
5: नमस्ते, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
1: गुड इवनिंग रवि।
5: मैडम मुझे जानना,
0: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से,
4: द कॉल ड्रॉप्ड, बट मीनवाइल वील मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्टोरी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल टूडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनीज स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज अराउंड 25.3% ईयर ऑन ईयर to 5,533 crore rupees. Bell standalone net profit increased by nearly 8.2% to over 1,048 crore rupees on an annual basis.
0: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया। हांगकांग के हैंगसिंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा। लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देगा या उसका फिर गिरावट का रुख आया, अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है, तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
1: देखिए, जियोपॉलिटिकल असर तो है ही लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे थोड़ा सा सेंटिमेंट, खासतौर से अगर आप देखें कोरियन बाजार जो है जो पिछले समय काफी गिरावट उसमें देखी गई थी तो वहां ये थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ है।
0: सिंगापुर की अगर बात करें तो वहां पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर के बड़ा ही एक बैलेंस रवैया अपनाया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर से काफी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर डॉलर का जो पेमेंट है उसमें बहुत ज्यादा उनको नुकसान ना हो, इसका भी असर पड़ सकता है मार्केट पर?
1: बिल्कुल, ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, हर देश जो है अपना जियोपॉलिटिकल जो असर है वेस्ट एशिया क्राइसिस का उसको मैनेज करने के अलग अलग तरीके देख रहा है, तो सिंगापुर में भी ये कोशिश की गई है, उसका भी असर डेफिनेटली उनके बाजार पर दिखाई दे रहा है।
4: So Deepshika, when we see, and we were talking about volatility earlier, and when we see fluctuations of volatility in Indian market and other Asian and other markets, do you feel that because of India's dependence on crude imports, what's happening in the Gulf region is likely to affect our markets much more than the others?
1: Absolutely, Gaurang. Indian markets, Indian economy, we are largely import dependent for our crude requirements, and we saw how rupee came under pressure, we had a pull out of foreign portfolio investors, they have now begun to come in, which is a very good news for the Indian markets. So definitely if something really severe, like I said earlier, if the conflict resolves, if you have a durable resolution to the conflict in West Asia, it would be a great positive for the Indian market. But definitely if it goes into crisis mode, if there are more complications and crude spikes, it's again a big negative for India, much more than other countries.
4: From Jaipur, we have Jitendra now, our next caller. Jitendra, welcome. Please ask your question.
6: मैडम, जैसे अभी प्राइवेट बैंक के 5-6% शेयर जो है डाउन हुए थे तो मैंने निफ्टी 50 से जो है एक दो परचेज किया और हर एक महीना करूंगा, तो ठीक है क्या मेरा करना प्राइवेट बैंक का?
1: जितेंद्र जी, फाइनेंशियल सेक्टर खासतौर पे जो बैंक्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रह रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी भी बहुत बेहतर रही है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है फाइनेंशियल सेक्टर का परफॉर्मेंस जो है आगे भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में बेहतर रहने की उम्मीद है।
4: इफ देयर इज, अगर पहले बैंकिंग सेक्टर आपके पास नहीं है और आपने लिया तो डाइवर्सिफिकेशन
1: भी हो सकता है जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा।
4: We have now to take a look at the crude oil prices. Global crude oil prices plunged around 7% today after the United States and Iran paused military strikes over the weekend. Brent crude was trading 7.6% down at $89

0: there is crude available. So despite if you look at not when the crisis was like at its peak, but after that crude has sort of stabilized. So unless something really drastic happens, we expect the crude to remain stable in this range possibly. I qualified it.
1: I know. It's absolutely understandable, because these are just opinions, and I think based on your experience and also trying to moderate a path, because we really don't know what's going to happen.
0: Yeah, exactly.
1: Next caller from Bhilai, Ravi. Ravi, welcome. Hi, please ask your question.
2: Good evening. Mutual fund only portfolio management service करके आज कुछ एक सेबी ने कुछ नया decision लिया, उसका investors पे क्या impact होगा, क्या फायदा है उसका? Thank you.
1: So Ravi, we have a special program on mutual funds, and I think it's an important decision. We would request you to tune in to our mutual fund program, and there the expert will come and give you exactly the advice that you want, because we don't have much time. That's why we would really value your time also, that you get the expert from the best expert, which is a mutual fund expert.
3: दर्शिका, हमने देखा कि लास्ट वीक में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 तक पहुंची, उसके बाद लगातार ये गिरावट का रुख दे रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो इस महंगाई और चालू खाते के घाटे के संदर्भ में अगर देखें तो कैसा आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी और उसका असर नो डाउट मार्केट पर जरूर पड़ेगा?
0: बिल्कुल, देखिए इन्फ्लेशन पर तो बहुत ही पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि क्रूड गिर रहा है, बराबर हमारा आयात बहुत ज्यादा होता है, और करंट अकाउंट के लिए भी आपने जो पूछा उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव है क्रूड का गिरना।
1: In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading nearly 0.7% up at 1,44,750 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% up at 2,24,510 rupees per kilogram a short while ago.
3: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.6% बढ़कर 1,43,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% की बढ़त के साथ 2,23,862 रुपए पर थी। प्रेक्षिका जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
1: Absolutely. Thank you, Paraya. Thank you for coming on to our program. Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:44 और 30 सेकंड हो चुके हैं। अभी जो आपने गीत सुना उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसडी बर्मन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अलबेला से, ये खूबसूरत सा गीत होगा चितलकर की आवाज में। चलिए सुनते हैं ये गीत, गीत मेरे मनमीत। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज आपके साथ है अर्पना।

अगला गीत ओपी नैयर की रचना है और गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है। आशा जी की आवाज में गीत होगा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत।

जा तो आप कहीं नहीं सकते, ये हमें मालूम है, क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, गीत मेरे मन मीत। अगला गीत आप सुनेंगे उसके बारे में

कुछ जानकारी आपको दे दूं, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज है, एसजी बर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। और इसी के साथ अर्पना भी आपसे इजाजत चाहेगी। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 11:55 और 44 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए गीत का आनंद लीजिए। अर्पना को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष

के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी दी। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि ये हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडोन गाँव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों और दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपए और उपविजेता को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूँ राखी आपके साथ।

जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। वीकेंड की छुट्टी कब पलक झपकते बीत जाती है पता ही नहीं चलता। फिर आता है सोमवार, ढेर सारी जिम्मेदारियां, काम का लंबा सिलसिला और भागती दौड़ती जिंदगी। पूरे दिन बस यही लगता है कि कब थोड़ा सा सुकून मिले और कब अपनी पसंद के गीतों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिले। और अब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो सुकून भरा पल आ ही गया। अब वक्त है सारी थकान को पीछे छोड़ने का, मन को हल्का करने का और उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ खूबसूरत लम्हे जीने का जो हर तनाव को पल भर में भुला देते हैं।

दुनिया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वीकेंड की यादें अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं हुई कि सोमवार अपने साथ जिम्मेदारियों की लंबी फहरिस्त लेकर आ गया। दिन भर काम की रफ्तार ऐसी रही कि खुद के लिए दो पल निकालना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अब जब रात धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है तो मन भी कुछ सुकून के पल समेटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सच है कि दिमाग के किसी कोने में कल सुबह के कामों की तैयारी भी चल रही है। अलार्म का ख्याल, अधूरे कामों की सूची और आने वाले दिन की योजनाएं। मगर जिंदगी का खूबसूरत संतुलन शायद यही है कि जिम्मेदारियों के बीच भी हम अपने लिए कुछ पल चुरा ही लेते हैं।

हुआ है 12:29 और ठीक 46 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बड़े दिल वाले फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पिछले गीत ने बिल्कुल कहा कि जो पल है बस यही है, इसी पल को जी ले, अगले पल की चिंता में इस वक्त को मत गवा, यही पल है जीने के लिए और खुशियों के लिए।

कमांडो फिल्म का गाना आपने सुना विजय बेनेडिक्ट की आवाज और अलीशा चनॉय की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिंदगी का असली हुनर यही है कि काम के बीच अपने सुकून के पल भी बचाए जाएं। अगर हम सिर्फ काम में ही उलझे रह गए तो मंजिल तो मिल जाएगी मगर सफर की खूबसूरती कहीं पीछे छूट जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जिम्मेदारियां भी निभाई जाएं और अपने मन को सुकून देने वाले छोटे छोटे लम्हों को भी पूरी शिद्दत से जिया जाए। काम और सुकून दोनों का साथ ही जिंदगी को संतुलित, खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाता है। शायद यही जीने की असली कला है और यही जिंदगी का सच्चा सुख भी।

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितने सुकून भरे पल हैं ये, मीठा मीठा संगीत कानों में घुल रहा है और मीठी मीठी नींद पलकों पर धीरे धीरे उतर रही है। ऐसे लम्हों में लगता है जैसे सारी थकान कहीं खो गई हो और रात अपनी नर्म बाहों में हमें प्यार से सुला रही हो।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।

0: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारिडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। दिल कब किससे और क्यों जुड़ जाए, इसका फैसला अक्सर इंसान नहीं कर पाता। फिर भी मोहब्बत में दूसरे की रजामंदी और एहसास की अहमियत बनी रहती है। इसलिए शायर बड़ी नफासत से पूछता है, तू बता दे प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं।

राजहट फिल्म का गाना आपने सुना, रफीक की आवाज में। हजरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। कुछ लोग जिंदगी में बाहर की तरह आते हैं, उनकी मौजूदगी से हर लम्हा महक उठता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो अपने साथ कई अनकहे सवाल छोड़ जाते हैं। दिल बार बार यही पूछता रह जाता है, क्या राज था जो दिल में छुपाकर चले गए। शायद मोहब्बत की कुछ दास्तानें कभी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए उनकी खामोशियां भी उम्र भर सुनाई देती रहती हैं।

दंगा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। कुछ रिश्ते वक्त की धूल में धुंधले जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन दिल की किताब से कभी मिटते नहीं। शायद इसीलिए गीतकार लिखता है, दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। इसमें शिकायत कम है और वफा का एहसास ज्यादा है, जैसे कोई चुपचाप ये कह रहा हो कि अगर तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे यादों में भी रहना पड़े तो भी तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी।

बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया श्याम सुंदर ने।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

झांझर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये पुरानी संगीत की धुनें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि दिल के उन कोनों को भी छू जाती है जहां अनगिनत यादें चुपचाप बसी होती हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू है, अनकहे जज्बातों की गर्माहट है और रिश्तों की मासूमियत का एहसास भी।

भाभी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। क्या ही नाजुक और दिलकश अंदाज था इस गीत का। महज एक सवाल और एक जवाब में मोहब्बत का पूरा जहां समा गया है। जिसका नाम हर धड़कन के साथ लिया जाता हो, उसका परिचय शब्दों से नहीं दिया जा सकता। जब कोई दिल में बस जाए तो उसकी पहचान जुबान की मोहताज नहीं रहती। इस गीत की मासूम शरारत और प्रेम की गहराई आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी अपने दौर में रही होगी। पुराने गीत सचमुच कम शब्दों में बड़े बड़े एहसास कहे जाने का हुनर रखते थे।

बहार फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, कितनी प्यारी चुलबुली और मन को गुदगुदा देने वाली धुन है ये। इस गीत में प्रेम का निमंत्रण भी है, अपनापन भी और एक मासूम सी शरारत भी, जैसे कोई अपने प्रिय से मुस्कुराते हुए कह रहा हो, एक बार मेरे दिल में जगह बना लो, फिर कभी उसे छोड़कर मत जाना, और फिर छम छमा छम छम। इन शब्दों की झनकार गीत में ऐसी मिठास खोल देती है कि अचानक ही होंठ मुस्कुरा उठते हैं और मन थिरकने लगता है।

जेलर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। प्यार जब दिल में उतर जाए तो फिर चैन और आराम दोनों ही कहीं पीछे छूट जाते हैं। दिल हर धड़कन में उसी का नाम दोहराता रहता है। तभी तो कहा गया है, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ।

अनुराधा फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि शंकर ने। कभी कभी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। वक्त आगे बढ़ता रहता है मगर यादें वहीं ठहरी रहती हैं। जब उन पलों की खुशबू फिर से मन को छूती है तो दिल से और होठों से यही आवाज आती है, हाय रे वो दिन क्यों ना आए।

चार दिन और चार रातें फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 33 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

काली टोपी लाल रूमाल फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। दर्द की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है, कभी वक्त उसे कम नहीं कर पाता तो कभी दवा भी बेअसर रह जाती है। इंसान हर दर पर उम्मीद लेकर जाता है, हर रास्ता आजमा लेता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ यादों के सहारे जीना सिखा देते हैं। तभी तो ये एहसास दिल से निकलता है, न तो दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया।

0: है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरव परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A correspondent reports that for the 6th consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Rajya Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during their protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Rajya Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Daka

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। रात सुरमई जैसे किसी चित्रकार ने आसमान पर गहरे नीले और काले रंगों से एक खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। दिन भर की भागदौड़ के बाद यही वो वक्त है जब दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है और दिल अपनी ही धड़कनों को सुनने लगता है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना। मन्ना डे और उषा खन्ना की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो, कितनी खूबसूरत बात कह जाता है ये भाव। जब दो सुर एक दूसरे में इस तरह खुल जाएं कि उनमें अलगाव की कोई रेखा ना बचे, तब केवल एक धुन जन्म लेती है जो समय की सीमाओं से परे चली जाती है। शायद इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम अपनापन है।

दस्तक फिल्म का गाना आपने सुना मदन मोहन की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ये गीत विरह, अकेलेपन और अनकहे दर्द की ऐसी अभिव्यक्ति है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं

फिल्म चोरी चोरी का गाना आपने सुना अफरोज बानो की आवाज में, संगीत दिया साजिद वाजिद ने। सावन की पहली फुहारें बरसते ही जाने कितनी बेटियों को अपना मायका याद आ जाता है। झूले, पेड़ों की हरियाली, माँ की ममता और बाबुल का स्नेह, सब कुछ जैसे मन को पुकारने लगता है। तभी तो ऐसे गीत पीढ़ियों से दिलों में बसे हुए हैं। वो केवल मौसम नहीं, रिश्तों की खुशबू भी साथ लाते हैं।

वक्त हुआ है 2:27 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

इम्तिहान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शाम तो हर रोज वैसी ही होती है, मगर हर शाम का एहसास एक सा नहीं होता। कभी वही शाम यादों की चादर ओढ़ लेती है, कभी किसी अपने की आहट बन जाती है, और कभी यूं ही दिल को सुकून दे जाती है। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गजल सुनी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अमीर मीनाई ने ये गजल लिखी और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। महबूब के चेहरे से नकाब धीरे धीरे सरक रहा है और उसकी खूबसूरती भी परत दर परत सामने आ रही है। उस नजारे का लुत्फ जल्दबाजी में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता है।

अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:47 और ठीक 31 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

रिश्ता कागज का। फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही नीता अग्रवाल के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

फिल्म आशा से अभी आपने एक गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना यूएसपी पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। एनआईएसएम में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सेबी की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीमों ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 10 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

किसी से जान पहचान होती है, पहली मुलाकात होती है, और कई बार पहली मुलाकात इस तरह की मुलाकात हो जाती है जो जीवन भर की याद बन जाती है, या कहें कि रिश्ता भी बन जाता है। इसी तरह की पहली मुलाकात से सजा ये गीत, आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। ओपी नैयर का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम दो दिलों की दास्तान। ये गीत आपने सुना।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना साथियों। हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के संयुक्त स्वर थे। फिल्म का नाम हमराही जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। साथियों, रात का समय और नींद न आने का सबब भी खोज रहे हम कई बार। ऐसा हो भी जाता है साथियों, कई बार नींद नहीं आती, ऐसे में ओल्ड कोल्ड सुरीले गीत हम सफर बनते हैं, हमराही बनते हैं, तो दिल को ताजगी मिलती है, सुकून मिलता है।

गुलशन बावरा की लिखी रचना आपने सुनी साथियों। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों का जादू, फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। साथियों, जब तक जीवन में कोई हम सफर नहीं आता तब तक बात ही अलग होती है, लेकिन जैसे ही हम सफर जीवन में प्रवेश कर लेता है जीवन भर के लिए, जी हाँ, तो बात बिल्कुल अलग ही हो जाती है। दुनिया नई नई से दिखने लगती है और बहुत सी हमारी बातें बदल भी जाती हैं, यानी सकारात्मकता का पुट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है।

12 ओ क्लॉक इस फिल्म का गीत साथियों अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों से सजा ये नगमा था। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। ओपी नैयर का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये प्यार भरी रचना थी।

शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया ये गीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हमराही फिल्म का नाम

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत आपने सुना प्यासा फिल्म से। 1957 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। और जब साथियों दिल से दिल की डोर बंध जाती है तो क्या होता है? जी हाँ, यही कहते हैं हम सभी। क्या कहते हैं?

लवीक मेगाहर्ट से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना 1969 रिलीज इस फिल्म का नाम धरती कही पुकार की। साथियों उपहार तो बहुत लिए दिए जाते हैं। जाहिर उपहार जब हम किसी को देते हैं तो बहुत सोचा समझा जाता है कि भाई क्या ऐसी चीज़ दें जो काम भी आए अच्छी लगे। इसी तरह की बातें हमारे जहन में होती हैं। लेकिन इस अगले गीत में उपहार दे रहे हैं ले रहे हैं क्या उपहार आ रहा है स्वीकार किया जा रहा है या नहीं सुनते हैं इस नगमे में।

और हम भी इन सुंदर गीतों की जोड़ी से बंधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, यही लौट लौट करके आएंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, एफएम कोच सौ

जी हाँ, स्वीकार हो गया इनका जो गिफ्ट ये दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, और दिल का गुलदस्ता बाहों का हार, भाई ऐसा उपहार तो क्या बात है। शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत शैली शैलेंद्र ने लिखा था, शारदा और किशोर कुमार की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत में। फिल्म का नाम वचन, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब सुंदर सवाल सुंदर जवाब से सजा ये गाना।

शिकारी फिल्म से ये रचना अभी आपने सुनी। 1963 रिलीज ये फिल्म थी। साथियों, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें थी, जीएस कोहली का संगीत और फारूक कैसर की लिखी रचना थी। साथियों, बात जब हम करते हैं तो तारीफ का जो अंदाज होता है वो बहुत निर्भर करता है कि हमारे रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। तारीफ भी उसी तरह से तो होती है। और हम तो कहते हैं कि जो बात अच्छी लगे, जो गीत अच्छा लगे, बात अच्छी लगे, घटना अच्छी लगे, उस बात, घटना या कोई भी विषय हो इस दुनिया की, उसकी तारीफ बेबाक रूप से, पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल ईमानदारी से कर देनी चाहिए, जैसे कि ये कर रहे हैं यहाँ।

जुल्फ का पहरा। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज उसी सजा ये गीत आपने सुना रूठा ना करो। ये था फिल्म का नाम। 1970 रिलीज फिल्म। चितलकर रामचंद्र का संगीत था। हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये नगमा।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं छाया फिल्म से। 1961 रिलीज फिल्म सलील चौधरी का संगीत राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस भी हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना USP पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया तथा भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। NISM में आयोजित एक

दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सेबी की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। उन्होंने निरंतर सीखने पर बल दिया और पेशेवर विकास के लिए सेबी के समर्पित क्षमता निर्माण विभाग और शिक्षा पोर्टल का उल्लेख किया। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय वाय प्रातः के 4:11:06। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, जीवन पथ पर चलते चलते कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अजनबी होकर भी बड़े अपने से लगते हैं। उनकी आभा एक अरुणिमा भांति होती है जो हमारे जीवन पथ को प्रकाशवान करती है।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, असद भोपाली की लिखी रचना। फिल्म का नाम हम सब उस्ताद हैं, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। और अब दिल की मुराद पूरी हुई, घर आ गए हैं दिल में बसने वाले।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आवारा फिल्म से अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी।

साथियों, जब कभी अकेले तन्हा होते हैं और बहुत से प्रश्न कई बार मन में होते हैं, बहुत सी उलझने होती हैं, ऐसे में जब हम याद करते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बहुत बहुत अपना है और हमें लगता है कि उसे याद करके शायद हमारे मन का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा, इसी तरह की भावना होती है और वाकई ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे रिश्ते, ऐसे दोस्त होने चाहिए जीवन में जिन्हें हम सोच करके भी खुश हो सकें, गर्व महसूस कर सकें।

गुलजार की लिखी ये रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफी शारदा की आवाजों का जादू, फिल्म का नाम सीमा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में।

राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना भी आपने सुनी। फिल्म का नाम भाभी, 1957 रिलीज। ये फिल्म लता मंगेशकर की आवाज थी और संगीत दिया था इस गीत के लिए चित्रगुप्त ने। साथियों, अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा, उसकी आभा विद्यमान है और हरी घास पर कुछ है जो चमक रहा। क्या है वो, किसका है?

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों। सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना, फिल्म का नाम परख, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में।

संकल्प फिल्म से ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सुलक्षणा पंडित और विनोद शर्मा की आवाजें थी, खय्याम का संगीत, कैफी आजमी की लिखी रचना। और आइए अब थोड़े से बच्चे भी बन जाते हैं। बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है साथियों जीवन में, तभी तो तनाव मुक्त रह पाएंगे। तनाव तो होते ही हैं, समस्या परेशानी चलती ही रहती हैं जीवन में, लेकिन सुंदर संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए सकारात्मकता के साथ यदि हम आगे बढ़ते रहें तो जीवन में परेशानियां जो आएंगी वो जल्द ही चली जाएंगी या हमें कम महसूस होंगी। आइए सुनते हैं ये सुंदर रचना।

0: शमशाद बेगम लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। शकील बदायूं ने की लिखी रचना थी और नौशाद का संगीत था। साथियों हमारी सीमा प्रहरी विपरीत परिस्थितियों में भी दिन हो रात हो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हम सभी की रक्षा करते हैं, उन्हें उन सबको नमन करते हैं हम। और जब उनको घर परिवार की याद आती है तब कई बार ऐसा होता है ड्यूटी से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है या कई बार वो अपने घर की तरफ चल पड़े होते हैं, रास्ते में होते हैं, मंजिल तक पहुंचे भी नहीं होते और रास्ते में ही उन्हें संदेश मिलता है कि तुरंत वापस आ जाएं, एमरजेंसी है। ऐसा भी होता है साथियों। तो और जब छुट्टी के दिन आ जाते हैं कि भाई छुट्टी होने वाली है अब तो घर जाएंगे हम, तो उस समय क्या माहौल होता है, उसी तरह की परिस्थिति पर ये गीत बहुत ही सुंदर सजा है हमारी फिल्म जगत में।
1: बन जाए समंदर रोशनाई का बयां फिर भी न होगा हमसे ये।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों से सजा ये गीत आस का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना साथियों। 1961 रिलीज़ ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और कमल बारौट के स्वर थे इस गीत में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, भरत व्यास की लिखी रचना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सती सावित्री।

लता मंगेशकर की आवाज से सजाई ये गीत आप सुन रहे हैं अग्नि परीक्षा फिल्म से। 1981 रिलीज है फिल्म। सलील चौधरी का संगीत, योगेश की लिखी रचना। और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है

लता मंगेशकर हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं एक ही रास्ता फिल्म से। 1956 रिलीज फिल्म, हेमंत कुमार का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमफुर्मी में हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशुक को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई है। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की निंदा कड़ी है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब अगले महीने की 10 तारीख तक 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने चुनाव का बहिष्कार किया जबकि संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। PTI का दावा है कि पिछले महीने JAAC के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक क्षेत्र में अशांति रही। नाइजीरिया के कडुना राज्य में कल बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कोरा परिषद क्षेत्र के नारीडो गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी समुदाय पर इसी समय हमला हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, वन विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिला शूट पुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए 2रा स्वर्ण पदक जीता।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 5:11 और 18 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं होना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक लेकर जाता है।

हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से हमने आपको सुनवाया। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सरदार मलिक का संगीत था और हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

बैचू बावरा, अभी आपने इस फिल्म से ये रचना सुनी। 1952 रिलीज ये फिल्म आवाजों का जादू था उस्ताद आमिर खान और डीवी पलुस्कर का। नौशाद का संगीत था, शकील बदायूनी की लिखी रचना थी। साथियों, जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण होती है तो किसान के साथ साथ ये धरती भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है। इस तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने, उसे साफ रखने वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके जरूर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज से सजाई ये गीत आप सुन रहे हैं आईना फिल्म से। 1974 रिलीज ये फिल्म, नौशाद का संगीत, जानिसार अख्तर की लिखी रचना। साथियों, भोर का समय, किसी घर में नृत्य कार्यों की शुरुआत तो कहीं स्कूल दफ्तर जाने की तैयारी, और ऐसे में साथी बनते हैं ये गीत जो हमें और भी ऊर्जावान और आशावादी बनाते हैं।

आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज उसी सजा ये गीत, फिल्म का नाम अभी तो जी लें। 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सपन जगमोहन का संगीत था, नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। मित्रों, जीवन की एक नव भोर का आगमन तब भी होता है जब किसी भी परिवार में नव शिशु का आगमन होने वाला होता है। उसके आने की दस्तक से सारा घर, सब रिश्ते खुशी के माहौल से सज जाते हैं। ऐसी ही सुंदर खुशी को दर्शाता ये गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत अभी आपने सुना जिंदगी फिल्म से। 1964 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। नवजीवन नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण, दूर कहीं से आ रही मुरली की आवाज, ऐसा सुंदर संयोग और उस भोर को और भी सुहाना बना दे।